印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस

सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे, ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर था 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

स्कीम बिल्डिंग इंडियाज मैरिटाइम फ्यूचर परदादांगन ग्लोबल साथ इनी सेमा किंदी दोरंग ओले लॉजिस्टिक बर्बासिस कंटेनर मनुरुत कॉन्फ्रेंसी पर सरिकातान बांगसा बांगसा तेंतांग परदादांगन दान पंबांगुनान UNCTAD सकितार दिलापान पुलु पर्सन परदादांगन बारंग ग्लोबल बर्दासार कन वॉल्यूम दियांकुत मलालुई लाउत ट्रांसपोर्टासी मारितिम मंजादी तुलांग पुंगुंग परदादांगन इंटरनेशनल सेमेंतारा इतु कार्गो दालम कंटेनर मंचाकुप हाम्पिर दुआ प्रतिगा निलाय परदादांगन इंटरनेशनल ट्रेन इन मनुरोती पेंटिंग न्या स्ट्रैटेजिस लॉजिस्टिक कंटेनर यांग इफिसियन दालम मंदु कुंग्रांताय पासो ग्लोबल दालम बाबरापा ताउंतराहिर कतेंगांगन जियो पॉलिटिक गांगुआन रानताई पासोक दान परुबान रूटे पलायन तेला मनका करेंतानान दलम परगेराकन बारंग ग्लोबल UNCTAD मंगा माती बहवा गांगु अंतर सबूत तेला बर कॉन्ट्रीब्यूसी तरह दाप वाली तीलतास तारीफ अंगुतान दान मनिकात कान तेकानन पाडा जारिंगान ट्रांसपोर्टासी मारितिम आकिबात निया बान्याक नगेरा सेमाकिन मनिकान कान पनिंकात कान का मामपुआन मनुफाक्तर दालम नगेरी उन्तुक आसेत लॉजिस्टिक पेंटिंग तर मासुक कंटेनर पंगिरीमान परान इंडिया यांग सेमाकिन बसार दालम मनुफाक्तर ग्लोबल दान परदादांगान इंटरनेशनल तेला मनिंकात कान परमिंता अंतर हादाप पर गिरा कान कार्गो दालम कंटेनर से चारा सिग्निफिकेंट नामुन मस्की पुन परदादांगान एक्सपोर इम्पोर एक्सेंटरूस बरकेम बांगदान पंबांगुनान लॉजिस्टिक बड़लांगसुंग पसात इंडिया सभागेयान बसार मासी बरतांग बरगांतुंग पाडा कंटेनर कोसुंग यंग दी इंपोर इंडिया मंग इंपोर हाम्पिर दुआ जूता कंटेनर कोसुंग सत्याप्ता हुन उन्तुक ममनु ही परमिंतान डोमेस्टिक दान का पलवानरी पोजिसी हाल इनी मंबुआत का तर सेदियान कंटेनर रेंतान तर हादाप फ्लुक्तुआसी पासार ग्लोबल वालितास बियाया अंगुतान दान गांगुआन रानताय पासुक कंटेनर पंगिरीमन अडाला कंटेनर कार्गो बाजा स्टैंडर्ड यांग दी गुनाकान उन्तुक मंगाकुत बारंग मलालुई कापाल करेता आपी दान जालन राय तानपा मंबोंकार दान मंगे मास कंबाली बारंग सलामा पर जालनान दी बांगुन सस्वाय स्पेसिफिकासी ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यांग दियाकुई सेचारा इंटरनेशनल कंटेनर ममुमकिन कान ट्रांसपोर्टासी अंतरमोडा यंग लांचार दान परदादांगन ग्लोबल यंग इफिशियंट उकुरान यंग पालिंग उमूम अडाला कंटेनर दुआ पुलुकाकी दान एम्पात पुलुकाकी यंग दियाकुर दालम 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स TUS यही तु सातवान स्टैंडर्ड उन्तुक मंगुकुर कैपेसिटास कंटेनर मनियदारी बरबागी तांतांगन यंग मुंचुल तर सबूत पमरिंता मंग उमूमपन कंटेनर मैन्युफैक्चर असिस्टेंस स्कीम CMAS स्केमाइनी बर्तुजुअन मम्बांगुन इकोसिस्टम मनुफाक्तर कंटेनर यांग कॉम्पिटिटिव सचारा ग्लोबल दी इंडिया देंगन मंदोरोंग मनुफाक्तर डोमेस्टिक दान दी इन्वेस्टासी दी सलुरु रांताई निलाय इनिशियाटिव इनी जुगा बर्तुजुअन मंगुरांगी कर कतर गांतुंगान पाडा इंपोर्ट दान मंपरकुआत कतानान रांताई पासोक सलान इतु स्केमा इनी मलंकापी बरबागी इनिशियाटिव पमरिंता दी बावा मेक इन इंडिया मारिटाइम अमृतकाल विजन 2047 दान पंगेमांकन लॉजिस्टिक मल्टीमोडा सहिंगा बर कॉन्ट्रीब्यूसी तरहाद आप MBC मारिटाइम दान परदादांगन इंडिया दलम जंका पांजांग CMAS दी उमकान दलम अंगारान पर सातुआन ताहुन 2026 ताहुन 2027 इनी मरूपाकान इनिशियाटिव यांग दी टारगेट कान उन्तुक मंबांगुन इंडस्ट्री मैनुफैक्चर कंटेनर डोमेस्टिक यांग यांग कॉम्पिटेटिव मलालुई दुगुंगान फाइनेंशियल दान का लंबागान देंगान अलोकासी सबेसार 10,000,000,000 करोड़ सलामा लिमा ताउन स्केमा यांग दी उसूल कान तरसबूत मंदुकुंग पंबांगुनान फासिलिटास मैनुफैक्चर बारू दान परलुआसान उनित उनित यांग सुडा आडा स्केमा इनी जुगा बर्तुजुआन मनिकत कान कैपेसिटास मैनुफैक्चर गुना ममनुही पमरिंतान इंडिया यांग तरुस मनिकत कान तरहदप कंटेनर पंगिरीमान इनिशियाटिव इनी मनार्गेत कन कैपेसिटास मैनुफैक्चर डोमेस्टिक ताहुनान सकितार 10,000,000,000 दारी कैपेसिटास प्रोडक्सी कंटेनर सात इनी हिंगा मंचा पाए 2,05,00,000 20 फुट इक्वलेंट यूनिट TUS केमा इनी दीपर किरा कन आकान मनचिप्टा कन पलवांग पासर हाँपी 8,50,000,000 करोड़ से

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री

0: अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता

0: ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
1: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
4: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी भी सतर्क रहने की सलाह।

0: चला दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sherjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
4: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and

0: सूबे को ज्यादा मौसर, सरमायाकारी के लिए ज्यादा साजगार और अहम मादनियात के लिए मुल्क की बढ़ती जरूरतों से हम आहंग करना भी है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारत गणराज्य के विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये खुदनविश्त साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जिंदगी के सफर, उनके तजुर्बों, जद्दोजहद और हुसूलियाबियों का इंतहाई जाती नौयत का खाका पेश करती है। साथ ही उनकी शुरुआती जिंदगी से लेकर भारत के 14वें सदर जमहूरिया के तौर पर अवामी जिंदगी में उनकी खिदमात का अहाता करती हैं। ये किताब उन इकदार, तजुर्बों और हालात से भी वाकिफ कराती है जिन्होंने साबिक सदर जमहूरिया के सफर और अवामी खिदमत को नुमाया किया। वजीर आजम की जानिब से खुदनविश्त का इजरा भारत की सरकर्दा अवामी शख्सियात में से एक की जिंदगी और उनके तावुन की निशानदेही करने का मौका है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुल्कभर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कल शहरियों से फख्र, ताजीम और अजमत के साथ यौम आजादी मनाने और तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म करने की अपील की थी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर हर घर पर कौमी परचम लहराने की अपील की। खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाब मांडविया ने माय भारत रजाकारों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक रैली की क्यादत की। मीडिया से बात करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि 1000 से ज्यादा माय भारत रजाकारों ने रैली के जरिए मुल्क तक फिटनेस का पैगाम पहुंचाया है। जनाब मांडविया ने किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में साइकिल चलाने के फायदों को नुमाया किया।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे से मुत्तसिल बुलवार्ड रोड पर आज अजीम तिरंगा यात्रा निकाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रैली की क्यादत की जिसमें हजारों तलबा, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी अहलकारों और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के उम्मीदवारों का एहतजाज 19वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं और इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रांची में देर रात जिला इंतजामिया एहतजाजी मुजाहरे की जगह पर पहुंचने के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तलबा ने कल शाम खामोश मार्च निकाला और कहा कि ये मार्च पुरअमन और जमहूरी तरीके से उनके मुतालबात को उठाने के लिए था। बाद अजा जिला इंतजामिया के अफसरान की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एहतजाज कर रहे तलबा के पास पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे तलबा से बात की। तलबा रहनुमा ने कहा कि इंतजामिया ने कोर कमेटी के मेम्बरान की तफसीलात मांगी हैं और यकीन दहानी कराई कि वो इस अमल में ताउन कर रहे हैं। तलबा लीडर देवेंद्र नाथ महतो मुसलसल 10वें दिन भूख हड़ताल पर हैं और उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में बीजेपी रहनुमा जिनमें रियासती जनरल सेक्रेटरी अमर कुमार बौरी और रियासत के नायब सदर भानु प्रताप शाही एहतजाज के मकाम पर पहुंचे और तलबा के लिए हिमायत का इजहार किया। रांची से महविश रामायण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में कल रात आग लगने के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक ये आग विले पार्ले वेस्ट में वाकई 12वीं मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को रात 10 बजे के करीब वाकई की इत्तला मिली। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दीगर खिदमात को फौरी तौर पर बरुए कार लाया गया। देर रात लगभग 12:25 पर आग पर काबू पाया गया। मजीद जांच जारी है। پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کی عوامی

0: एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों से कल मुजाहिरों का इनेकाद करने की अपील की है। इस तरह इन मुजाहिरों को बैन अल-अक़वामी अहमियत हासिल हो गई है। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि कई मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों और सिफारती मिशनों के बाहर मुजाहिरों का इनेकाद करने का मंसूबा है ताकि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल की जानिब बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूल कराई जा सके। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो खित्ते में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बैन अल-अक़वामी तवज्जो रागिब करने के लिए रैलियों का भी इनेकाद करे। अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी ऐलान किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। केरलम के मुख्तलिफ मंदिरों में आज आबा व अजदाद को खराज अकीदत पेश करने से मुतालिक रिवायती रस्म करक्की डाका वावू बली अदा की जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: केरलम में आज सुबह करक्की डाका वायु बाली की रस्म शुरू हो गई है। बेशतर मंदिरों में ये रसूमात सुबह 3:30 बजे और 5 बजे के दरमियान शुरू हुई। मलयालम माह करक्की डाका नए चांद के दिन को मरहूमीन के लिए रसूमात अदा करने के लिए हिंदू रिवायत में इंतहाई मुकद्दस तसव्वुर किया जाता है। मुख्तलिफ देवास्वोम बोर्ड्स और मंदिरों ने अकीदतमंदों के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। बारिश के मद्देनजर नदियों के किनारों और साहिली इलाकों में सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। अनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों, सिक्किम, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कल तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून की लगातार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ने का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थरों के गिरने की वजह से आमो दरफ्त मुतासिर है और लोगों को बिजली और पानी फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अगले 12 घंटे के दौरान शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर मकामात पर रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। मंडी में जिला इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर गिरने के खतरे के पेश नजर मंडी और कुल्लू के दरमियान कौमी शाहरा 21 और मंडी और जोगिंद्रनगर के दरमियान कौमी शाहरा 154 पर कल रात से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा रियासत की दीगर 204 सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान शिमला के महकमे मौसमियात ने 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें और मकामी इंतजामिया की जानिब से वक्तन फवक्तन जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इधर ओडिशा में एक बार फिर दूर दराज के मकामात तक बारिश होने का इम्कान है जबकि खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बन रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के ज्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की है हालांकि इक्का दुक्का मकामात पर कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। महकमे ने आज अंगुल और क्यूंझार अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और संबलपुर समेत दीगर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ऊंची लहरें उठने के मद्देनजर चौकस रहें। ज़िरात और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में हरियाली अमावस्या के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में जनाब चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े हजारों कारकुन भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का इज्तिमाई अहद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 19 रियासतों और मरकज के जिलंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कैंसर को काबिल इत्तला मर्ज करार देने पर गौर करें ताकि मर्ज का जल्द पता लगाया जा सके और मरीजों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कल ये हिदायत जारी की। अदालत को बताया गया था कि 36 रियासतों और मरकज के जिलंतजाम इलाकों में से 17 ने

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में सईद अहमद खान का सितार वादन, राग था शुद्ध सारंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: कभी तो हंसाए।
1: वही ना तुराने रिगर अभी मैं कटी पतंग मैं सर ये किशोर कुमार मिंगु याद ऐ आत्र इन आत्र खेली अफसोन गरी मारा बिसु ये खुद मी कशाद।

ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, इन मिंगो याद के इन दुनिया इन महफिल इन जहान बरायमा नीस मैं मजबूर बे गम खोदा नास्टेम फिल्म ही राजा खानिंदे मोहम्मद रफ़ी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी

घर आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। आज का दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि हमारे युवा सपनों को ज्ञान विज्ञान और प्रकृति को सलाम करने की बात बताता है, तो आप सभी प्यारे श्रोता साथियों को मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी सुन रहे हैं। तो अब वक्त है कि हम पूछ लें आपसे वो सवाल जो होता है हमारे आज के प्रश्न का। तो साथियों आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस का माहौल बना हुआ है हमारे देश में, तो स्वतंत्रता दिवस की ऐसी कौन सी यादें हैं आपकी बचपन से जुड़ी हुई, जब आप झंडे फहराने या पूरे यूनिफॉर्म को मुश्तैदी से पहनने के साथ वहां पर जाकर बूंदी खाने जैसी यादों से जुड़े हुए हैं। इन यादों को हमारे साथ बांटिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और इनका उत्तर आपको देना है fmgoldga@gmail.com पे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भेजिए फटाफट अपने उत्तर हमारे साथ। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों, वे युवा जो हमारे विचार और अपने हौसलों से हवा का रुख बदल सकने की ताकत रखते हैं, जिनके प्रयास से देश और दुनिया की दिशा बदल रही है और हम इसे देख रहे हैं। और हमारे देश में तो जो आबादी का बड़ा हिस्सा है वो हमारे युवाओं का है, जो राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं, क्योंकि ये युवा ही नई कंपनी और स्टार्टअप शुरू कर रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं और ऐसे ही वो हमारे देश के नाम को रोशन करते जा रहे हैं। एक नहीं ऐसे अनेक नाम हैं जो युवा शक्ति का सफल हस्ताक्षर बन चुके हैं। तो आज का दिन हमारे युवाओं को समर्पित है, हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और आज के इसी दिन में हम याद करते हैं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनकी आज जयंती है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सफर की नींव मजबूत की। उसी तरह आज एक और विशेष दिन है जो हमें ज्ञान की दुनिया से जोड़ता है, राष्ट्रीय पुस्तकालाध्यक्ष दिवस। पुस्तकालय विज्ञान के पितामह डॉक्टर SR रंगनाथन की जयंती पर हम इस दिन को मना रहे हैं। उन्होंने कहा था, किताबें सिर्फ अलमारियों में रखने की चीज नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति है। और सच में दोस्तों, किताबों से अच्छा और सच्चा दोस्त कौन हो सकता है ना। और इसी के साथ सावन मास की अमावस भी है आज, जिसे हरियाली अमावस कहते हैं। ओडिशा राज्य में चितलागी या चितौ अमावस्या के नाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस दिन भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार और पारंपरिक पकवान चितौ पीठा का भोग भी लगा या जा रहा है। और उसी तरह आदि अमावस्या के नाम से दक्षिण भारत में भी आज के दिन को मनाते हैं। तो धरती की हरियाली का जश्न मनाते हैं आज मिलकर हम सभी, हरा भरा हो जीवन हमारे त्योहारों के संग, इसी संदेश के

0: यानी आशाओं के दीप जलाने वाले इस गीत को आप सुन रहे थे आशा फिल्म से, और आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। और दोस्तों आपको याद दिलाती हूँ आज की प्रश्नावली, चूंकि वो भी आशाओं से भरी हुई है, और वो है स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी याद है आपकी जो आपको आज भी गुदगुदाती है। हमारे साथ साझा कीजिए, और fmgoalga@gmail.com पर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी उन्हीं बातों के लिए। लेकिन फिलहाल साथियों, आज चूंकि बहुत खास दिन है, आज है नेशनल लाइब्रेरियन डे। तो आधुनिक दौर में पुस्तकों की भूमिका, डिजिटल युग में पुस्तकालय से जुड़ी जानकारी और बदलाव की दिशा में प्रकाश डालने के लिए नेशनल लाइब्रेरियन डे के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े धन सिंह बैसला जी से रश्मि कुकरेती जी की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड, और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। दोस्तों, जो पुस्तकालय है वो केवल किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विचारों का ऐसा खजाना है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। एक अच्छी पुस्तक हमें नए विचार देती है, नई दिशा देती है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो आज हम जानेंगे कि आधुनिक दौर में जो पुस्तकालय है उनकी क्या भूमिका है, और अगर हम डिजिटल युग में पुस्तकालय की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, और अगर आप किसी डिजिटल पुस्तकालय को इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या बदलाव आते हैं। तो उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धन सिंह बैसला जी, जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के बड़ौली गांव से आए हैं FM गोल्ड के स्टूडियो में। आप ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े हुए हैं, और धन सिंह बैसला जी ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग से लाइब्रेरी का निर्माण करने का काम करते हैं, और बहुत सारे अन्य जो सामाजिक सेवाएं भी अपने गांव में और आसपास के जो पलवल जिले हैं उसके क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत धन सिंह जी आपका FM गोल्ड के स्टूडियो में।
2: हार्दिक आभार
1: जी। तो धन सिंह जी, बताइए, आप जो अपने गांव में जन सहयोग से एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करवाया है, आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया, कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार से उसने मूर्त रूप लिया?
2: हमारे गांव में, वैसे ये हमारा संगठन जो है वो सारे देश में काम कर रहा है, 10-12 स्टेट्स में काम कर रहा है। उत्तर की तरफ का सारा जो क्षेत्र है वहाँ अभी तक हम पहुँच गए हैं। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तो है ही है, ये सारे क्षेत्र में, राजस्थान में बड़े व्यापक क्षेत्र में हमारा फैलाव है, मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में, संभल संभाग में, तो एक साथ 50 गांवों में, मतलब इस तरह से लाइब्रेरियों के निर्माण की मुहिम चलाई। तो हमारे गांव में अगर मैं बात करूं तो आरंभ में हम सारे लोग ऐसा महसूस करते थे कि बच्चों के लिए कैसी लाइब्रेरी की आवश्यकता है जहां वो सारे बैठ के पढ़ सकें। शहरी क्षेत्रों लाइब्रेरियां हैं, पेड लाइब्रेरियां हैं, ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं होती, तो 1500 रुपए 2000 रुपए अगर उन्हें पे करना होता है, फिर साथ में 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है, तो उनका समय भी बच जाए और उसका आर्थिक संसाधनों की भी बचत हो सके, ऐसा सोचकर हमारे दिल में ये ख्याल आया कि एक लाइब्रेरी का निर्माण हो गांव में। तभी उसी संदर्भ में हमें पता चला कि ग्राम पाठशाला नाम का संगठन वो काम कर रहा है, और जिसमें लाल बहार जी के नेतृत्व में साथी काम कर रहे हैं, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ, तो हमें एक दिशा निर्देश प्राप्त हुए कैसे हम आसानी से एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। हमें बड़ा मुश्किल सा कार्य लगता था, पर जैसे ही उस क्षेत्र में हम आगे गए तो पता चला बड़ा सरल सा काम है और बहुत सारे लोग कर सकते हैं।
1: तो ये जो लाइब्रेरी आपने डिजिटल पुस्तकालय बनवाया, वो जो जगह थी और उसका निर्माण था, वो जगह कौन सी जगह आप लोगों ने चुनी?
2: हमारे गांव में चौपाल है, बड़ा गांव है तो कई सारी चौपाल है, तो एक चौपाल है बड़ी अच्छी सी, उसे बैरम मोहल्ला की चौपाल कहते हैं
1: जी।
2: तो उस चौपाल को हमने मोहल्ले के लोगों से मांगा, बड़ा अच्छा सा स्थान था वो। जब हमने बताया किस तरह की हम एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं तो लोग बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि हम न केवल चौपाल देंगे बल्कि अगर जो आपको और कोई आवश्यकता हो आर्थिक संसाधनों की, वो भी हम आपके साथ हैं, आप प्रयास करिए, हम आगे बढ़ेंगे, और वो जगह हमें मिल गई।
1: तो जो आर्थिक संसाधन थे वो गाँव के लोगों ने ही
2: आपस में
1: दिए, और आप लोगों ने वो जो बिल्डिंग थी एक खड़ी कर दी। तो उसके बाद जब आप लोगों ने ये लाइब्रेरी बनवा दी, तो जो विद्यार्थी थे, शोधार्थी थे, या जो भी पढ़ने के रसिक थे बच्चे, वो कैसे जुड़े और इस लाइब्रेरी का स्वरूप आपने किस प्रकार से विकसित किया?
2: इसके लिए लोग इकट्ठे हुए। गांव में एक परंपरा आज भी है जिसको हम पंचायत कहते हैं, जिसे हम जनरली मीटिंग कह देते हैं आजकल, तो गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब इकट्ठे हुए, तो वो विभिन्न गलियों से, विभिन्न मोहल्लों से वो सब लोग आए
1: जी।
2: और जैसे ही वो आए तो वो सूचना

0: टेली के जरिए सबके पास तक पहुंच गई। सबके घरों में बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो पहले ही गांवों से शहर की तरफ जा रहे थे, वो पेड लाइब्रेरीज में जा रहे थे, फिर उन्हें
1: जहाँ
0: जगह
1: इंटरनेट
0: मिल
1: की
0: गया।
1: सुविधा
0: हाँ
1: मौजूद
0: हाँ
1: थी,
0: सबसे
1: बैठने
0: पहले,
1: के
0: हाँ
1: लिए एक आसान जगह थी, जहाँ कुर्सी था,
0: बिल्कुल
1: टेबल था और उनके
0: वाईफाई
1: पास
0: था,
1: वाईफाई था। जी
0: हमने एसी भी लगवाया उसमें।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: वातानुकूलित बनवा दिया।
0: वातानुकूलित बनवा दिया।
1: जी, करीब कितने बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग जो वहाँ पर अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस
0: लगभग
1: लाइब्रेरी का?
0: 50 बच्चे हम
1: अच्छा
0: लाइब्रेरी के में हैं।
1: जी, तो ये क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं या किसी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं आगे जीवन सुधारने के
0: वहां
1: लिए?
0: उसमें जो स्टूडेंट हैं या जो करियर के लिए काम कर रहे हैं, वो
1: जी
0: वाईफाई से भी वो ले रहे हैं। हर तरह की पुस्तकें अवेलेबल करा रखी है वहां,
1: जी
0: और कुछ प्रौढ़ लोग भी आते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, वो जो अपने प्राचीन जो ग्रंथ हैं, हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और मानवीय संवेदनाओं को विकसित करने वाली जो अच्छी चीजें हैं वो सब चीज वहां मौजूद है। अगर किसी को कोई और अच्छी चीज, जैसे किसी के दिमाग में कोई आती है, वो अगर उस तरह की किताब की मांग करता है तो हम वहां ला कर रखते
1: तो
0: हैं।
1: आपने किताबें भी रखी हुई हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी या वाईफाई जो है
0: हाँ दोनों,
1: उनको दे रखा है
0: हाँ
1: बच्चों
0: दोनों
1: के
0: चीज
1: लिए,
0: हैं।
1: दोनों चीजें मौजूद
0: हाँ
1: हैं। तो इसके अलावा जैसे आपने देखा कि पढ़ने वाले बच्चे वाईफाई से जो है बहुत सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से जुड़ गए और पढ़ना शुरू किया, तो सिर्फ पढ़ना ही शुरू किया या उनके अंदर और भी कुछ बदलाव आपने देखे?
0: हमारे दिमाग में पहले ऐसा था कि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक विकास होगा, लेकिन जब लाइब्रेरी खुल गई, जो उसके इतर परिणाम आए
1: जी
0: वो बिल्कुल अलग थे। पहले जो गांव के नुक्कड़ पे जो बच्चे इधर उधर खड़े होते थे, एक दूसरे से कुछ कहते थे, कहीं कभी झगड़े भी हो जाते थे, आपस में टसन होता था, अहंकार का भाव होता था, अब उनमें सौहार्द का, प्रेम का भाव है। वो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, वो कभी कोई मजाक भी करते हैं तो उनमें बड़ा आनंद पूर्वक होता है, सौहार्द बढ़ा है।
1: जब किताबें हैं तो जो ज्ञान का प्रकाश जब पहुंचता है तो अच्छे विचार बनते हैं, और जब अच्छे विचार बनते हैं तो जो आपने बताया कि सौहार्द भी आपस में बढ़ा, और मुझे लगता है कि समय का सदुपयोग विद्यार्थियों ने किया। अच्छा, ये निशुल्क है बिल्कुल लाइब्रेरी?
0: बिल्कुल निशुल्क है।
1: जी,
0: पहले गांव के बच्चे शहर में जाते थे तो उनका 1.5-2 घंटा खर्च होता था
1: आने जाने में।
0: आने जाने का, और उन्हें उसके लिए पैसा देना पड़ता था।
1: जी
0: अब उन्हें वो मुफ्त में उपलब्ध है और उनका समय भी ज्यादा खर्च नहीं होता। एक बहुत कमाल की बात बताऊं, एक दिन मुझे बुखार हो रहा था, रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, और रात को 1:45 बजे का समय था,
1: जी
0: तो हमारे सीसीटीवी कैमरा से जुड़ी हुई है लाइब्रेरी, अपने फोन में हम देख लेते हैं, तो मैंने उसको देखा, तो उस समय रात के 1:45 बजे 17 बच्चे वहां पढ़ रहे थे।
1: अच्छा
0: बड़ा अच्छा लगा कि गांव के बच्चे जो पहले थोड़ा समय देते थे पढ़ने पर, अब वो लगातार बहुत लंबा समय दे रहे हैं और
1: जी
0: उसके परिणाम बेहतर आ रहे हैं।
1: तो ये तो सारी बातें जो अच्छे जो परिणाम आपको मिले, लेकिन जब आप बनवा रहे थे, सोच रहे थे, तो क्या बिल्कुल सहयोग एकदम मिल गया? क्या कुछ दिक्कतें भी आई बनवाने में?
0: हमें दिक्कतें कम आई, वैसे कुछ जगह दिक्कत होती, किसी गांव में मान लीजिए चौपाल नहीं है
1: जी
0: तो वहां कुछ लोगों के मकान हैं वो खाली पड़े हैं,
1: जी
0: वो लोग शहर में चले गए, क्योंकि अच्छे काम के लिए आदमी सदैव तैयार रहता है, उस घर का रखरखाव हो जाता है। और ऐसे लोगों से जब बात करते हैं, और बहुत सारे गांवों में लाइब्रेरी, लगभग लगभग 3-4 हजार गांवों में ग्राम पाठशाला के मिशन से लाइब्रेरी बन चुकी हैं अभी तक, और ये कार्य आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।
1: जी
0: तो वहां ये दिक्कत आती है कि अब जगह की क्या ऐसे व्यवस्था हो, दिक्कतें तो हैं,
1: हाँ
0: और कोई आदमी आगे बढ़ता है तो कदम चूम लेती है आकर के, खुद मंजिल है मुसाफिर तू हिम्मत न हार।
1: वाह,
0: बस
1: क्या
0: एकदम
1: बात है।
0: जैसे ही आगे बढ़े, तो हमारा तो अनुभव ये था, और जो हमें औरों का जो अनुभव हमने देखा शुरुआत में जैसे आरंभ हुई, तो मैं उस प्रसंग को बताना चाहूंगा। गनौली गांव में वो कोरोना काल था, तो गांव के बच्चे जो शहर जाते थे उनका वहां जाना, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था, कोई नहीं आ जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो गांव के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि उन क्यों नहीं, जो ये चौपाल पड़ी है उसके मरम्मत करा के इसको लाइब्रेरी बना दें, गांव के बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे। तो उन्होंने जितने बच्चों के लिए पढ़ाई, थोड़े ही दिन में वो बहुत कम पड़ गई। उन्होंने कहा कम पड़ने का तो सवाल ही नहीं होता था, जितने गांव के बच्चे हैं वो उससे भी ज्यादा बच्चे यहाँ दिख रहे हैं। पता चला कि आसपास के गांवों के बच्चे वहां आने लगे,
1: जी
0: तो फिर गांव के लोग बड़े सौहार्दपूर्ण भाव के होते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं उन गांवों में भी लाइब्रेरी हो, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
1: जी
0: तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के दूसरे गांवों में गए, और गांव में जाकर उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने उसको मतलब बिल्कुल हाथों हाथ लिया उस विचार को, और इस तरह से लाइब्रेरियां बनती चलेगी
1: जी। ये तो लोग बहुत अच्छे ही आपने बताई बात कि बहुत सारे बच्चे और जुड़ गए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पर और लैपटॉप पर और वाईफाई कनेक्शन के लिए उनके मन में एक बड़ा आकर्षण है कि हमें डेटा मिल रहा है, तो ये जो फ्री का डेटा मिल रहा है बच्चों को, इसमें एक सदुपयोग तो है ही कि आप अच्छी अच्छी साइट से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग होने के भी बहुत साधन मतलब रास्ते खुल जाते हैं। तो आप लोगों ने जब देखा इतने सारे बच्चे जुड़ गए और इतने सारे बच्चे पढ़ने लग गए, यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि उसका सुरक्षित इस्तेमाल हो और जिस कार्य के लिए ये वाईफाई वहाँ लगाया गया है वही कार्य वहाँ हो रहा हो?
0: हमने हमारे गाँव में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं और 15 हमारे साथी ऐसे हैं जो सीसीटीवी कैमरा से जुड़े हुए हैं और वो उस पर नजर रखते हैं। फिर जो गांव के जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं वो उधर से निकल रहे हैं तो वो एक बार झांक जाते हैं उधर।
1: अच्छा।
0: तो गांवों में ये बात अभी भी है कि कोई बुजुर्ग है और वो उन्हें एक बार शाबाशी देके जाता है, उनका उत्साहवर्धन होता है, साथ में अनुशासन भी बढ़ता है, उन्हें लगता है कि कोई जिम्मेदार आदमी हमें देख रहा है। फिर बीच में कई बार अड़ोसी पड़ोसी या और भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो जाते हैं, देख के आते हैं उन्हें वो क्या कर रहे हैं बच्चे,
1: आपस चौकसी भी है, निगरानी भी है, बच्चों की देखभाल भी है, सुरक्षा भी है।
0: जो जिम्मेदार बच्चे हैं जो थोड़े से मतलब बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा नजर रखने की बात कहते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और थोड़ा सा निखरा हुआ है, थोड़ा सा विकसित विचार के जो लोग हैं वो उन्हें अपने आप भी चेक करते हैं, कई बार उनसे कुछ नहीं कहते वो सूचना हम तक प्रेषित कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से भागीदारी से जो पूरा गांव है वो कोशिश कर रहा है। अब एक बात और दिमाग में आती है धन सिंह जी कि ये बन जाने के बाद हर व्यक्ति के मन में होता है कि अब कुछ आगे बढ़े, तो आगे की योजनाएं भविष्य की क्या क्या है आप लोगों के दिमाग में? क्या और भी पुस्तकालय खोलने का विचार है या इससे जुड़ी कुछ और योजनाएं जो युवाओं का भविष्य बेहतर कर पाएंगी?
0: हमारी योजना है 6,64,369 लाइब्रेरी हमारा टारगेट है।
1: अच्छा।
0: भारत के हर गांव में एक निशुल्क लाइब्रेरी हो, वो बालक जो कहीं भी अभावों में है, अभावों के कारण से उनकी शिक्षा कमजोर ना हो, उनका मानसिक विकास कमजोर ना हो, क्योंकि ज्ञान वैभव ही परम वैभव पर देश को ले जाएगा, ऐसी हमारी धारणा है। हम जल्दी ही आगे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए एक अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था भी वहाँ हो जाए, हालांकि वो एक ही जगह है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी गांवों में कुछ लोग हैं जो बिना किसी देखरेख के नहीं छोड़ना चाहते, हाँ, तो वो हिचकिचाट उनके दिमाग में ना हो, इसलिए लड़कियों के लिए एक अलग लाइब्रेरी बन सके।
1: और हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं इस काम के लिए कि इसी प्रकार से आप काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलते चलते अगर हमारे सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे धन सिंह जी?
0: मेरे संदेश भी है, प्रार्थना भी है और अपने छोटों को सलाह भी है कि बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाए ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनके संस्कार अच्छे हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, शांति हो, सब एक दूसरे को प्रेम करें, तो उसके लिए लाइब्रेरी बनवाएं अपने अपने गांव में। हर गांव की सज्जन शक्ति हर श्रेष्ठ काम के लिए आने के लिए तैयार रहती है, पर उस पर यही है बस कोई पहल करे। तो कोई भी व्यक्ति अपने गांव में पहल करिए, आपके श्रोताओं से मेरा ये अनुरोध है वो अपने अपने गांव में सज्जन शक्ति को इकट्ठा करें, उनसे बात करें और इस कार्य में सहयोग करें हमारा और आगे बढ़ें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जहाँ पुस्तकें होंगी वहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं होता बल्कि ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और आजीवन सीखने का तो ये केंद्र है। और पुस्तकालय में पढ़ने की जो आदत है ना वो तो शोध को बढ़ावा देता है, व्यक्तित्व का विकास उसमें होता है और एक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार समाज के निर्माण में पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डिजिटल युग में तो जो पुस्तकालय और भी विश्वसनीय है और प्रामाणिक जानकारी के एक सशक्त स्रोत के रूप में उभरा है। इसमें धन सिंह बैसला जी हमारे साथ जुड़े, एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आए और धन सिंह जी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: मैं आपका और एफएम गोल्ड का, ऑल इंडिया रेडियो का, सभी का हार्दिक आभारी हैं हम सभी। आपके श्रोताओं को पुनः पुनः नमस्ते
1: और इसी के साथ रश्मि कुकरेती को भी दीजिए अनुमति, नमस्कार।

साथियों, नेशनल लाइब्रेरियन डे के उपलक्ष्य में आपने अभी बातचीत सुनी ग्राम पाठशाला मिशन से जुड़े धन सिंह बैसला की रश्मि कुकरेती से। और दोस्तों, चूंकि हमारी हर दिन की कोई ना कोई प्रश्नोत्तरी है, और इस प्रश्नोत्तरी को हम आपसे फिर दोहराते हैं, और वो प्रश्नोत्तरी है, आपको बताना है स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी याद है जो आपको आज भी आती है, गुदगुदाती है, और शेयर करना है fmgoldga@gmail.com पर। और ये बात मैं आपको दोहरा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं इन प्रश्नों के उत्तर लेकर, जिसमें हमारे नियमित श्रोता साथी हैं नवीन भाटिया जी, और इन्होंने अपनी याद बताते हुए कहा है कि प्राइमरी स्कूल में जब वो थे तो वो एक फ्लैग लेकर पूरे मोहल्ले में घूमा करते थे। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि देशभक्ति का भाव बचपन में हमारे दिल में जिस तरीके से चस्पा होता है वो पूरी उम्र हमारे साथ चलता है। तो बहुत शुक्रिया अपनी इस भावना को हमारे साथ साझा करने के लिए नवीन जी। हमारे अगले जो साथी हैं, श्रोता साथी, उनका संदेश है, वो है अफरोज शेख, और ये नेमुआ सुपौल बिहार से भेज रहे हैं अपना संदेश, और कहते हैं कि इनका संदेश थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मैनेजर का एक लकड़ी हुआ करता था, मतलब एक लकड़ी कोई होती थी और वो अपने गांव में उसे उसका छिलका उतारकर उससे रंग निकालते थे, और रंग निकालकर डिज़ाइन बनाते थे, और उस डिज़ाइन से उसे झंडे में लगाकर गांव गांव गली गली घूमते थे, और उन्हें बहुत आनंद आता था। वही क्या बात कही आपने, सचमुच में बचपन जो है वो मौलिकता से भरा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि बस हम अपने देश को सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे कागज में ही सही पर उस समय अपनी कल्पनाओं को बिखेरते थे। बहुत ही खूबसूरत सा आपका संदेश है। और गौरी शंकर जी का हमारा संदेश आया हुआ है, और उन्होंने कहा है राम राम जी, बहुत बहुत आपको भी राम राम। और उन्होंने कहा है 60 साल पहले जब हम स्कूल जाते थे तो स्वतंत्रता दिवस का इंतज़ार बहुत रहता था, और उस दौरान टीवी भी नहीं होता था, और हम स्कूल में इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बहुत बेचैन रहते थे, और रेडियो पर भी हम सुनते थे तो मन में बहुत खुशी होती थी इस दौरान जो कार्यक्रम आते थे उन्हें सुनकर। लेकिन आजकल वो सुविधा नहीं दिखती है उन्हें, फिर भी पहले जैसी बात को वो मिस करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपनी इन भावनाओं को हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक और श्रोता साथी हैं जिन्होंने कहा है रेडियो और टीवी जो है 26 जनवरी की सुबह जो होती थी उससे हमारी शुरुआत होती थी, और उसमें देशभक्ति गीत बजते रहते थे। दूरदर्शन पर सुबह सुबह परेड देखने को मिल जाया करता था, और पूरे परिवार के साथ हम एक साथ बैठकर इस वातावरण का आनंद लिया करते थे। जी, बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत यादें हैं आपकी, ऐसी ही यादें हम सभी के बचपन में जुड़ी होती हैं। तो आपको भी बताना है साथियों, जिन्होंने अभी तक संदेश नहीं भेजा है, कि स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी मीठी मीठी याद है जो उन्हें गुदगुदाती है आज भी, और बताना है fmgoldga@gmail.com पर। हम बातें करेंगे और भी, फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

यशोदास और हेमलता की इस खूबसूरत सी आवाज में आपने सुना चिचोर फिल्म से ये गीत, और सुर में सुर मिलाने का ही तो मौसम है दोस्तों, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का हम सभी को बेसब्री

इंतजार है ना। और ऐसे में इस बार हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आजादी के 100 साल पूरे होने तक, यानी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प अब दूर नहीं है, है ना। और इस संकल्प को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है दोस्तों, जिसके लिए हमें नवाचार और कौशल विकास को पूरी तरह से अपनाना होगा। अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए देश हित में एक साथ चलना होगा, और नई चीजें सीखते हुए अपनी कार्यकुशलता को भी बढ़ाना है, नवाचार करना है, ताकि देश के विकास के लिए नए आइडिया और स्टार्टअप्स हमारे देश में खुलें और हमें नया अवसर मिले। इससे ही तो हमारा आने वाला कल बनेगा वही जो हम आज से बनाना चाहते हैं, है ना दोस्तों। जाहिर है हर भारतवासी गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और दूसरे सामाजिक जो बुराइयों के मुद्दे हैं उनसे अपने देश को मुक्त देखना चाहता है। इसीलिए आने वाले वर्षों में मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचा और उच्च जीवन स्तर हासिल करने के लिए हम सब एक साथ प्रयासरत हैं, और हम स्वयं साक्षी हैं कि सपनों का भारत पूर्ण विकसित होने के लिए कदम बढ़ा रहा है अपने आगे। और इसलिए हमारी जो देश की अलग अलग पीढ़ी है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और अमृत पीढ़ी के हमारे जो नौनिहाल हैं वो नवाचार को तेजी से अपना रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। और जानते हैं, इनके आइडिया, इनके हुनर और संकल्प में निहित है विकसित भारत का स्वप्न, जो विकास, लिंग समानता, रोजगार के क्षेत्र में प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है। समावेशी विकास में महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना हमारे देश की नीतियों का मुख्य हिस्सा है, और स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना, डिजिटल इंडिया के जरिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलना, ये सभी विकसित भारत की पदचाप हैं जिसे हम सुन रहे हैं, है ना। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि असंख्य बलिदान, त्याग, संघर्ष और समर्पण से हासिल आजादी का जो युवा पंछी है, वो अपनी आंखों में 2047 के विकसित भारत का स्वप्न लिए उन्मुक्त उड़ान भर रहा है, जो जल्द ही अपनी मंजिल को पाने वाला है।

दोस्तों, लक्ष्य फिल्म से आप शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर और कुणाल गांजेवाला और विजय प्रकाश की आवाज़ में सुन रहे थे इस वीरता और शौर्य से भरे गीत को। और हमारा जो प्रश्न आज का है वो भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है जो बचपन की यादों को लिए हुए है, कि स्वतंत्रता दिवस की बचपन की कौन सी ऐसी याद है जो आपको आज भी आती है, गुदगुदाती है। आपको बताना है हमें fmgoldga@gmail.com पर। हमारे पास संदेश है हमारे साथियों का, जिसमें डी राजेश्वर राव ने लिख के भेजा है कि जब वो इंडिपेंडेंस का समय होता था बचपन के समय में, तो वो ड्रेसअप होते थे और बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर प्रभात फेरी के लिए जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे अपने झंडे के साथ इसे फहराते हुए आगे बढ़ते हुए। जी, बहुत सुंदर सी बात आपने कही और ऐसी बातें लिखकर आप हमें हमारा बचपन भी याद दिला रहे हैं। और ऐसी ही यादों को साझा करते हुए सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी भी हमारे साथ हैं, जिन्हें ये दौर बहुत अच्छा लगता है और उन्हें याद है कि बचपन में वो बूंदी के लड्डू खाया करते थे, झंडे फहराने जाते थे, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते थे और राष्ट्रगीत गाया करते थे। बहुत खूबसूरत बात। और एक और सुंदर सा संदेश साझा किया है, ये हैं हमारे उग्रसेन यादव जी, जिन्होंने कहा है कि इस दौरान जब स्वतंत्रता दिवस होता था तो बचपन में खुद अपने हाथ से पेंट करके तिरंगे बनाते थे और एक बांस की लंबी डंडी उसमें लगाकर स्कूल जाते, और स्कूल से गांव-गांव उसे लेकर वो एक कतार में घूमते थे सारे बच्चे और गाना गाते हुए जाते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बचपन तो ये जो एहसास है वो एहसास ही बहुत खूबसूरत सा एहसास है, और ये खूबसूरत से एहसास से हम सभी जुड़े रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे ही खूबसूरत एहसास ही बनाते हैं हमारी खूबी को। तो दोस्तों, हर किसी में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, उसकी खूबी जरूर होती है। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी अपनी खूबी क्या है, यानी कि आपकी यूएसपी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भाई, बिजनेस की दुनिया में यूएसपी शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी प्रोडक्ट को खास बनाती है, लेकिन जिंदगी में जब हम इसी यूएसपी की बात करते हैं तो ये आपके गुणों की बात करते हैं, कि आपका ऐसा कौन सा गुण है जो आपको खास बनाता है। सोचिए जरा भाई, किसी की यूएसपी उसकी आवाज हो सकती है, किसी की उसकी अपनी मुस्कान, किसी की अपनी मेहनत, किसी का अपना ज्ञान, किसी के सोचने का ढंग अलग हो सकता है, किसी की अपनी ईमानदारी और साफ गोई हो सकती है उसकी यूएसपी, है ना? तो डिग्री और करियर की पहचान के साथ गुणों को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है अपनी विशेषता को बरकरार रखने के लिए। तो कौशल, नवाचार और व्यक्तिगत विशेषताओं के लिए हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी खूबियां हमें दी जा रही हैं, ताकि हम सीखें अपने गुणों को और पहचानें। तो दोस्तों, हम सब में कुछ ऐसा है जो हमें भीड़ से अलग बनाता है, तो आपको पहचानना है और निखारना है अपने आप को और ढूंढना है कि ऐसा क्या है खास आपका जो आपको अलग बनाता है, और भगवान ने उस खूबी को आपको दिया है सबसे अलग रहने के लिए।

0: लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज़ में गाइड फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे दोस्तों, और इन खूबसूरत बातों और संकल्पों के साथ आज के कार्यक्रम का होता है यहीं विराम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अनुमति दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा बोस को। नमस्कार। आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
2: घर आंगन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का

0: जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Home Minister Amit Shah has said that the government is fully prepared to discuss any issue, including the students' issue, and

0: एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
2: जी
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में, आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, लेकर आई हूं आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म कार्यक्रम जिसमें आप जानते हैं कि हम हर रोज लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एक नई चुनिंदा फिल्म, और आज इसी कड़ी में लेकर आए हैं हम आपके लिए साल 1996 में बनी एक ऐसी फिल्म जिसकी गूंज आज पूरे 30 साल बाद भी उतनी ही साफ सुनाई देती है जितनी तब सुनाई देती थी, और इस फिल्म के गीत आज भी हमारी रूह को ऐसे ही छू जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसने पंजाब के दर्द को बड़े पर्दे पर उतारा, वो भी बिना किसी मिर्च मसाले को लगाए, और हमारे सीधे दिलों से जोड़ दिया इस फिल्म को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की उस मास्टरपीस फिल्म के बारे में जिसका नाम जब भी हमारे मन में आता है तो खुद ब खुद हम पंजाब की उन ठंडी रातों, सरसों के खेतों में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस फिल्म के बनने के पीछे बहुत सारे दिलचस्प और मज़ेदार किस्से हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो जो फिल्म है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, वो फिल्म है साल सन 1996 में आई गुलजार साहब की फिल्म माचिस, जिस फिल्म से बहुत से नए कलाकारों ने, बहुत से नए किरदारों ने इस फिल्मी दुनिया में, फिल्मी नगरी में पदार्पण किया, वो सब भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं लता जी की आवाज़ में यह खूबसूरत सा गीत फिल्म माचिस से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म माचिस के बारे में। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में पंजाब के एक शांत से गांव में रहने वाले दो पक्के दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है। एक दोस्त है कृपाल सिंह पाली और जसवंत, इन दोनों से शुरू होती है फिल्म की कहानी। पाली, जिसका जो किरदार है वो निभाया है नवोदित अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने, और दोस्तों इस फिल्म में उन दोनों की दोस्ती को बहुत गहरा दिखाया गया। वहीं जसवंत की बहन वीरा यानी कि तबू से प्यार करता है कृपाल। दोनों का जो जीवन है वो बहुत ही आराम से खुशहाल चल रहा होता है, लेकिन मोड़ आता है जब अचानक से गांव में आती है पुलिस और एक बड़े पुलिस ऑफिसर की हत्या के शक में जसवंत को बेकसूर होते हुए भी पुलिस उठाकर ले जाती है, जहाँ पर जसवंत पर अत्याचार होते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको अधमरा करके घर के बाहर डाल जाते हैं। तो इस बात से नाराज़ पाली का इंसाफ से भरोसा उठ जाता है और वो अपनी राह से हटक जाता है। और फिर किस तरह से उनकी ज़िंदगी में जो तरह अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव आते हैं वही दिखाया गया है इस फिल्म में। पाली इस फिल्म में उस पुलिस ऑफिसर को मारकर अपना बदला लेता है जिसने उसके दोस्त को बेकसूर होते हुए भी सजा दी, और बाद में उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जेल के बाहर जब वो आता है तो वीरा ये दुख सहन नहीं कर पाती है और जहर खाकर अपनी जान दे देती है। और जब पाली को जब फांसी की सजा दी जाती है उस वक्त वीरा भी अपनी आखिरी सांसें लेती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से जो पुलिस की बर्बरता या व्यवस्था की जो नाकामी थी वो किस तरह से सीधे सीधे आम इंसान को, नौजवानों को अपराध की राह पर डाल रही थी, ऐसा कुछ दिखाया इस फिल्म में। और ये फिल्म उस वक्त इतना ज़्यादा हिट हुई थी कि इस फिल्म के गीत भी एक के बाद एक सुपर डुपर हिट हुई थी, और ये फिल्म वो फिल्म थी जिसने ढेर सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत। बाकी की जानकारियां, बाकी के किस्से करेंगे इस गीत के बाद।

जी दोस्तों, अगर फिल्म माचिस की बात हो और इसमें हम तबू के बारे में बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तबू जिन्होंने इस फिल्म माचिस में निभाया था वीरंग का किरदार, और इस रोल के लिए गुलजार साहब जब कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे उस वक्त उनके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी हीरोइनों के ख्याल थे। मतलब वो चाहते थे कि इस फिल्म के लिए या तो वो मनीषा कोइराला को लें या करिश्मा कपूर को साइन करें, लेकिन तभी उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार तब्बू की फिल्में देखें, और तब गुलजार साहब ने तब्बू की कुछ पुरानी फिल्में देखी, और उन फिल्मों में जब उन्होंने उनकी आंखों की गहराइयों को देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि भाई मुझे मेरे फिल्म के लिए वीरा मिल गई है। क्योंकि वीरा का जो शांत सहमा हुआ लेकिन अंदर से मजबूत किरदार था, वो सिर्फ और सिर्फ तब्बू निभा सकती थी। और एक और बात ये कि इस फिल्म माचिस में तब्बू ने बिल्कुल ग्लैम अप यानी कि नो नो मेकअप वाला किरदार उन्होंने निभाया है। बिना किसी मेकअप के उन्होंने उस पूरी फिल्म में आकर के ये साबित कर दिया कि असली अदाकारी सादगी में ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऐसे खूबसूरत और जो टैलेंटेड जो कलाकार हैं उन लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो भाई इसी तरह से खूबसूरत खूबसूरत रोल निभाते रहें।

माचिस की अगर बात हो तो जो एक और अहम किरदार है वो है पाली यानी कि कृपाल सिंह का, और वो किरदार निभाया चंद्रचूड़ सिंह ने। जो चंद्रचूड़ सिंह है उनके इस किरदार को निभाने के लिए बहुत से कलाकारों के ऑडिशन लिए गए, लेकिन गुलजार साहब को वो चेहरा मिल ही नहीं रहा था जो उनको चाहिए था। और एक दिन गुलजार साहब को एक ऐसा चेहरा मिला ऑडिशन के लिए, जब चंद्रचूड़ सिंह वहां पहुंचे तो उनकी आंखों को देखकर तुरंत गुलजार साहब ने कहा कि भाई मुझे मेरा पाली मिल गया। और इस फिल्म के लिए चंद्रचूड़ सिंह को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। और आपको बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने दो तरह के किरदार निभाए, मतलब अगर हम देखें तो फिल्म के जो शुरुआती दौर है उसमें चंद्रचूड़ सिंह एक अलग तरीके से नज़र आए हैं, और सेकेंड हाफ में चंद्रचूड़ सिंह का जो लुक है वो पूरी तरह से बदल गया, जिसमें वो बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, आंखों में बेबसी लिए हुए अपने दोस्त के लिए का बदला लेने के लिए घूम रहे हैं। और आपको मालूम है जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी हिमाचल में एक लोकेशन पे, तो चंद्रचूड़ सिंह अपने माचिस वाले लुक, पुराने फटे कपड़ों में घूम रहे थे और वहाँ के लोगों ने सचमुच में कोई भटका हुआ लड़का या कोई साधु और फकीर समझ रहे थे। यहाँ तक कि जो फिल्म के सेट पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने भी चंद्रचूड़ सिंह को अंदर आने से रोक दिया, उन्हें नहीं पहचान पाए थे वो। इस तरह की एक्टिंग, इस तरह से अपने किरदार में खो जाना चंद्रचूड़ सिंह ही कर सकते हैं। खैर दोस्तों, अभी अब आपको सुनवाने वाले हैं इस फिल्म का वो गीत जो कि हर किसी की जबान पर था और आज भी हर कोई इस गीत को गुनगुनाता है। जी हाँ दोस्तों, वो गीत है चप्पा चप्पा चरखा चले। अगर ये गाना जितना, मतलब कहीं ना कि एक धमाकेदार मस्ती से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसको शूट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस गीत को शूट किया गया था मनाली की बर्फीली रातों में, वो भी 0 डिग्री से भी नीचे के टेम्परेचर में इस गीत को शूट किया गया था। और उस वक्त इतना ज़्यादा ठंडा था कि जो इस फिल्म के एक्टर चंद्रचूड़ सिंह, जिमी शेरगिल और जो रवि गोसाई वगैरह उस वक्त थे इस गाने में, उनको बोलते वक्त भी दिक्कत हो रही थी और उनके मुंह से उस वक्त भाप निकल रही थी। गुलजार साहब ने इसे छिपाने की बजाय उसे बिल्कुल सीन का ऐसे ही हिस्सा बनाया, ताकि उससे फिल्म में असली पहाड़ी रात का जो माहौल है वो पूरी तरह से उभर कर आए। तो लीजिए सुनते हैं वही खूबसूरत सा गीत हरिहरन सुरेश वाडकर और के की आवाज़ में।

जी दोस्तों, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये वही गीत है जिस फिल्म से विशाल भारद्वाज, जो इस फिल्म के संगीतकार हैं, उनके करियर में नई ऊंचाइयां मिली, नया मोड़ आया। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों विशाल भारद्वाज उस वक्त नए नए संगीतकार थे और वो लता जी के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन जब लता जी ने इस गाने की रिकॉर्डिंग की तो गुलजार साहब की लाइनों और विशाल साहब के संगीत को सुनकर स्टूडियो में मौजूद हर इंसान की आंखों में पानी आ गया था। वैसे आपको बताएं कि ये जो गीत अभी आपने सुना, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये गीत को लिखा गुलजार साहब ने, और जब विशाल साहब ने इस संगीत दिया इस गीत में, तो गुलजार साहब ने कहा कि भाई वाह, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि तुमने मेरे जो शब्द थे उन्हें एक संगीत दिया है, उन्हें आज तुमने अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर गले लगाया विशाल भारद्वाज को। और यही वो फिल्म है जिस फिल्म से चंद्रचूड़ सिंह, जिमी शेरगिल, विशाल भारद्वाज, के जैसे जो नए अपने करियर को शुरू करने वाले व्यक्तित्व थे, जो कि आज हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान रखते हैं, उन सब की शुरुआत इसी फिल्म से हुई। जी हाँ दोस्तों, जिमी शेरगिल की भी शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी और वो आज एक पहचाना हुआ ऊंचा नाम है। और उनको भी इस फिल्म में गुलजार साहब ने उनकी आंखों की मासूमियत को देखकर ही चुना था। जी दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े हुए तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन वक्त की कमी है और हमारे पास संदेशों का भी भंडार है, तो हम पहले शामिल कर लेते हैं अपनी फिल्म, अपने जो दोस्तों के संदेश हम तक पहुंचे हुए हैं उन संदेशों को शामिल करते हैं। और जो हमारे पास में ये संदेश आए हुए हैं दोस्तों, ये जो संदेश है इसको भेजने वाले हैं हमारे पास, ये संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं संदीप मक्कर जी, और इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया ज्योति मन्नत भारत के साथ कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। अगला संदेश हम तक आया है उसको भेजने वाले मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। श्री सुधाकर, राजे जाधव, देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी, हर्षदा हमारे साथ जुड़े हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी टिवानशी खेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं फजिलका पंजाब से, और पूरा जो खेड़ा परिवार है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगला संदेश आया है हम तक दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी का, कोरमा, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत जानकारी के लिए। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंजल, सोनू और तमन्ना भाटिया के साथ, और इन्होंने संदेश भेजा है हम तक स्टेशन रोड जमशेद।

से। अगला संदेश हम तक आया इसको भेजने वाले हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशान नवानकर जी। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, ननी पोती अविंका, तनुश्री गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पीरा बाजार झुमरी तलैया से जुड़े हुए हैं अभय कुमार, प्रियंका मुन्नी, जयप्रकाश साव, रिया जिया दुसी, आयुषी अनिरुद्ध बाबू जी के साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश आया और इसको भेजने वाले हैं अजित भावसर जी, और इन्होंने संदेश प्रमिला भावसर जी के साथ वीरगाम गुजरात से भेजा है, और लिखते हैं इस गाने की जो शूटिंग हुई थी वो पंजाब में हुई थी, जिला संगरूर में हुआ था ये गीत, चप्पा चप्पा चरखा चले जी, और जो उन्होंने बहुत खूबसूरत सी और जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े पाठगढ़ मुल्तानी डांडा से, उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक जी के साथ में, फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देव शंकर तामुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया के साथ, और अगला जो संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला संदेश हम तक आया है इसको पहुंचाने वाले हैं तेली वाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आली, आयान बाबू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय साहू पोटिया कला जी पोटिया कला दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला संदेश भेजा डीबी राणा जी ने नेहरू विहार दिल्ली से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष कर से, विनोद कर से जुड़े हैं हमारे साथ, जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा के साथ, और दोस्तों अगला संदेश हम तक भेजा है देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल और मुरली क्षत्रिय ने। इसके अलावा अगला संदेश अनिल मोहन जी का पीटीआई संसद मार्ग से हमारे पास आया है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में एक ही फिल्म में बस इतना ही। इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मुझे दीजिए अनुमति, तो जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार और 3 बजे मैटिनी मेलेडीज के साथ में आपके सामने हाजिर होंगी आप सभी की पसंदीदा अंजू पांडे जी। तो तब तक मुझे दीजिए अनुमति और एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार विद्यार्थी मुद्दों समेत किसी भी मुद्दे ते चर्चा करने लिए पूरी तरह तैयार है। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना ने भारत के आजादी संग्राम नूं प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा जारी की। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी अज बंगलादेश रेलवे लिए 19 LHP ब्रॉडगेज मुसाफिर डब्बे की पहली खेप रवाना कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक पिकअप वाहन के डूंगी खड्ड डिगन कारण 4 लोगों की मौत, 9 जख्मी।

0: ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: अमित शाह ने कहा कि संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पहला ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट प्रीख्या लैके विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों नाल संबंधित सारे पहलुओं से चर्चा करने तैयार है। उन्होंने कहा कि अजिहे गंभीर मुद्दे से संसदीय प्रक्रियावां मुताबिक चर्चा की जानी चाहिए है। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि विरोधी धिर सदन नूं काम नहीं करन दे रही। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत वक् वक् मुद्दों से विरोधी धिर वल्लों हंगामे कारण दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अज सवेरे जदों लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, पर विरोधी धिर के मैंबरां ने नीट मुद्दे से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से अयोध्या राम मंदिर नूं दान च कथित बेनियमियां का मुद्दा चुकया। श्री बिरला ने विरोधी धिर के मैंबरां नूं सदन नूं काम करन देण दी इजाजत दी अपील की। उन्होंने कहा कि नीतियां ते विचारां दे मतभेद हो सकते ने पर देश दे लोक चाहुंदे ने कि संसद सुचारू ढंग नाल चले। लगातार हंगामे कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस तों पहलां लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है ते देश दे नौजवान सिक्ख्या विज्ञान पुलाड़ तकनालोजी ते उद्यमता समेत कई खेतरां च अपने पछाण बना रहे ने।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान टेक्नोलॉजी उद्यमिता कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो।
0: उधर राज्यसभा विच भी इसे तरह का माहौल देखने को मिला। जदों सवेरे सदन की कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तो मंत्रियों ने आपो अपने मंत्रालय के दस्तावेज मेज ते रखे। रक्षा वित्त आवाजाई सैर सपाटा सभ्याचार खेतीबाड़ी पशु पालन फूड प्रोसैसिंग कोला खान स्टील बारे संसदीय स्थाई कमेटियां दी रिपोर्टां भी पेश कीतियां गईयां। राज्यसभा के सभापति सी बी राधा कृष्णा ने विरोधी धिर के हंगामे विचकार सिफर काल शुरू किया। हंगामे दरमियान सभापति ने सदन नूं दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिता। उपराष्ट्रपति सी बी राधा कृष्णा ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के आजादी संग्राम नूं प्रेरित किया है ते देश की पछाण नूं मजबूत करना जारी रखे। उन्होंने यह गल सभ्याचार मंत्रालय वालों राष्ट्रीय गीत की 150वीं वरेगंढ मनाने लिए आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली च भागीदारां नूं संबोधन करदिआं कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम के शब्दों ने देश भगति की भावना नूं जगाया। वीर सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्गे आजादी घुलाटियां दे बलिदान नूं याद करदिआं उन्होंने कहा कि उन्होंने हिम्मत ने वंदे मातरम की भावना नूं जगाई रखी है। इस मौके केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू डॉ जितेंद्र सिंह ते होर मंत्री भी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा मुहिम तहत देशभर च कई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा मामले के खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज सवेरे मेजर ध्यान चंद स्टेडियम तो हर घर तिरंगा साइकिल रैली नूं रवाना किया। उधर जम्मू कश्मीर च अज श्रीनगर की मशहूर डल झील के कंडे ते एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRNewsJalandhar। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIRJalandhar ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIRJalandhar। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च एक समारोह दौरान साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वजीवनी भारतीय गणराज की जित मेरी जिंदगी मेरा संघर्ष जारी की। इस मौके श्री मोदी ने कहा कि वह साबका राष्ट्रपति कोविंद के जीवन के तजर्बों ते योग्यतावां ते भरोसा रखते हैं। स्वजीवनी भारतीय लोकतंत्र ते समाज लिए कीमती खजाना होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री कोविंद के जीवन ते समाज ते राष्ट्र लिए उन्होंने योगदान बारे बहुत कुछ विस्तार च कहा जा सकता है। उन्होंने लोगों ते खासकर नौजवानों नूं तो पूरा लाभ उठाने लिए किताब नु खुद पढ़ने लिए उत्साहित किया।
2: हमें भविष्य में गोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से

0: आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस स्वजीवनी साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक बहुत ही निजी वृतांत पेश करती है, जिस विच उन्हां दे तजर्बे, संघर्ष की प्राप्तियां, उन्हां दे शुरुआती जीवन तो लैके शानदार जनतक जीवन ते अखीर च भारत दे 14वें राष्ट्रपति वजों उन्हां दी सेवा दा वर्णन किया गया है। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी अज बंगलादेश रेलवे लई 19 LHP ब्रॉडगेज मुसाफर डब्बियां दी पहली खेप रवाना कर रही है। इस रैक विच 3 AC स्लीपर कार, 3 AC चेयर कार, 11 नॉन AC चेयर कार ते 2 पावर कार शामिल ने। इन्हां कोच विच कई विलखण डिजाइन विशेषतावां ते सोच शामिल है। इन्हां विचों बहुत सारे पहली बार इस किस्म दे कोच विकसित कीते गए ने। अधिकारित स्रोतां दा हवाला दिंदे होए साडे पत्रकार ने दस्सिया कि इन्हां कोच नूं बंगलादेश रेलवे दीआं संचालन ते मुसाफर जरूरतां नूं पूरा करन लई विशेष तौर ते डिजाइन कीता गया। इस विच बैठन दी व्यवस्था विच स्टेनलैस स्टील दे आर्म रेस्ट अते स्टेनलैस स्टील फुट रेस्ट दे नाल विशेष तौर ते डिजाइन कीतियां कुर्सियां शामिल ने। उन्हां कोल इक एकीकृत CCTV निगरानी प्रणाली, एक मुसाफर अलार्म सिस्टम, एक बेबी केयर रूम ते एक होर रूम भी शामिल है। RCF कपूरथला ते बंगलादेश रेलवे दरम्यान इस सहयोग की शुरुआत साल 2015-16 दौरान 120 LHP ब्रॉडगेज यात्री कोच की सफल सप्लाई नाल हुई सी। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा सैमरीगैलियो ने ब्रिटेन च रहिंदे पंजाबियां दीआं वख-वख चिंतावां ते चर्चा कीती, जिस विच उन्हां दे हितां नूं प्रभावित करन वाले मुद्दे भी शामिल ने। सैमरीगैलियो ते पंजाब दे NRI मामलिआं बारे मंत्री डॉ रवजोत सिंह दोवां ने कल चंडीगढ़ विखे अपनी मुलाकात दौरान पंजाबी प्रवासी भाईचारे नाल संबंधित मामलिआं ते आपसी संचार ते सहयोग नूं होर मजबूत करन दी लोड़ ते जोर दित्ता। डिप्टी हाई कमिश्नर ने नौजवानों नूं वीजा धोखाधड़ी ते ब्रिटेन च सुरक्षित अते कानूनी गतिशीलता बारे जागरूक करने लई लुधियाणा दे इक पिंड दा दौरा भी कीता। बाद विच अपने अधिकारित सोशल मीडिया अकाउंट ते उन्हां कहा कि उन्हां लोकां नाल सीधे जुड़न ते तजर्बे सुनन दा इक वधिया मौका मिलिआ। उन्हां कहा कि सही जानकारी तक पहुंच लोकां नूं वीजा धोखाधड़ी ते असुरक्षित प्रवास रूटां तों बचाउण दे सब तों वधिया तरीकिआं विचों इक है। हरियाणा गुणवत्ता प्रोसगी अथार्टी के चेयरमैन समीर पाल सरों ने नवी दिल्ली च भारतीय गुणवत्ता कौंसल के मुख दफ्तर विखे सीनियर अधिकारियों नाल इक मीटिंग की। श्री सरों ने दस्या कि मीटिंग च हरियाणा विच गुणवत्ता प्रोसगी प्रणाली नूं होर मजबूत करन अते होर कई मुद्दयां ते चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में श्री रेणुकाजी विधानसभा हल्के के गैटरॉक नेड़े एक पिकअप वाहन डूंगी खड्ड में डिग गया। हादसे च 4 लोगों की मौत हो गई ते 9 जख्मी हुए ने। जख्मियों में 2 की हालत गंभीर दसी जा रही है। सारयां नूं इलाज लई नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने अमरीका विच आयोजित एक ग्रैंड शतरंज टूर इवेंट सिंक फील्ड कप के दूजे दौर विच जावोखीर सिंदारोव नूं हरा के अपनी पहली जित दर्ज की है। इस जित नाल प्रज्ञानानंदा ने हुण 2 मैचां तो 1.5 अंक हासिल किए ने। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार विद्यार्थी मुद्दयां समेत किसी भी मुद्दे ते चर्चा करने लई पूरी तरह तैयार है। संसद के दोवां सदनां की कार्रवाई विरोधी धिर वलों हंगामे कारण दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हुई। राष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना ने भारत के आजादी संग्राम नूं प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा जारी की। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी अज बंगलादेश रेलवे लई 19 LHP ब्रॉडगेज मुसाफर डब्बियां की पहली खेप रवाना कर रही है। इस दे नाल ही राष्ट्र खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत सभी मामलात पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने दें। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखनांदाजी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर सवान हयात पढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया के शॉर्टकट कल्चर के खिलाफ खबरदार किया। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ गई है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम का जज्बा कौमी शनाख्त को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने फ्लाई स्कीमों की खातिर पेट्रोल और डीजल पर यतीम और बेवा सेस नाफिज किया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शदीद बारिश

0: के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने से 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। और शतरंज में अमेरिका में सिंक्वीफील्ड कप के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव को हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सरकार तलबा के मसले और पार्लियामेंट में अराकीन की तरफ से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने और बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। वो पार्लियामेंट के आते में नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है। मरकजी वजीर दाखला ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए दिन में 2 बजे तक स्पीकर को नोटिस दे सकती है ताकि आज 3 बजे बहस शुरू की जा सके। जनाब अमित शाह ने कहा कि अगर बहस शुरू होती है तो वह ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे और हर मेंबर की बात सुनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहस मुकम्मल होने के बाद वो कल 3 बजे बहस का जवाब देने को तैयार हैं।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: जनाब शाह ने यह भी कहा कि पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पहले ही ये बात वाजे तौर पर कह चुके हैं कि सरकार नीट इम्तहान से मुतालिक तलबा के एहतजाज से वाबस्ता सभी पहलुओं पर बहस के लिए तैयार है। ताहम जनाब शाह ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ऐवान को काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संजीदा मामले पर पार्लियामानी तरीक़ेकार के मुताबिक बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर शोरगुल की वजह से दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में मुबैना गड़बड़ का मामला उठाया। जनाब बिरला ने कहा कि आज मुल्क नौजवानों का बैन अल-अक़वामी दिन मना रहा है और मुल्क के नौजवान भी ये चाहते हैं कि उनसे मुतालिक मामलात पर बहस की जाए।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और विशेष स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो।
0: स्पीकर ने अपोजिशन मेंबरों पर जोर दिया कि वो पार्लियामेंट की अजमत और वकार को नुकसान न पहुंचाएं और सवालों का वक्फा चलाने दें, लेकिन अपोजिशन ने अपनी मांग पर जोर देना शुरू कर दिया। अपोजिशन की जानिब से शोरगुल जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जब राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो मुतालिक वजीरों ने अपनी वजारत की दस्तावेजात ऐवान में पेश की। शोरगुल के दौरान चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फा सिफर का आगाज किया और इस दौरान सीपीआईएम के मेंबर जॉन ब्रिटास ने ऐवान में एक दूसरे मेंबर की तरफ से उनके खिलाफ मुबैना तौर पर तोहिनामेज जुमले इस्तेमाल करने का मामला उठाया। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अराकीन को मशवरा दिया कि वो नहायत मोहतात रहें और अपने 7 मेंबरों के जज्बात को ठेस न पहुंचाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जिसे भी पसंद करते हैं उसकी सवाने हयात पढ़ें और रील्स और सोशल मीडिया के दौर में शॉर्टकट से गुरेज करें। उन्होंने विकसित भारत मिशन को आगे ले जाने की खातिर नौजवानों को खुद को वक्फ करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने एक ऐसी नस्ल पर जोर दिया जो मुश्किलों में साबित कदम रहती है और कौमी खुद किफालत की राह तलाश करने के लिए हिम्मत और हौसला बरकरार रखती है।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा किया। इस सवानयात में जनाब कोविंद के गैर मामूली सफरयात का बगौर जायजा लिया गया है, जिसमें उनके तजर्बात, जिद्दोजहद और उनकी इब्तदाई बरसों की हसूलियाबियों से लेकर उनकी सरकर्दा आवामी जिंदगी और भारत के

0: 14वें सदर जमहूरिया की हैसियत से उनकी खिदमात का अहाता किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीवी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम के जज्बे ने भारत की जिद्दोजहद आज़ादी को तहरीक दी और आज भी यह कौमी शनाख्त को मुस्तहकम कर रहा है। कौमी गीत के 150 बरस मुकम्मल होने के मौके पर सकाफत की वजारत की जानिब से मुनक़िदा हर घर तिरंगा बाइक रैली के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। नायब सदर ने कहा कि वंदे मातरम के अल्फाज ने हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाया और नौ आबादियाती निज़ाम हुकूमत का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ खित्तों, ज़बानों, अकायद और पस मंज़र से वाबस्ता अफराद को मुत्तहिद किया।
1: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस साल ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के जज्बे को वक्फ है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम 2026 वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के जज्बे को वक्फ है, जिसमें हुब्बुल वतनी तिरंगे पर फख्र और मादरे वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम का मकसद लोगों की यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लहराने की हौसला अफजाई करना है। मजमूई तौर पर तिरंगे को फहराया जाना न सिर्फ कौमी परचम से एक जाती रब्त की अलामत है, बल्कि इससे मुल्क की तामीर के हमारे मजमूई अहद का भी इजहार होता है। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना और कौमी परचम के सिलसिले में बेदारी पैदा करना है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया है। रियासती सरकार के टैक्सों और आबकारी महकमे ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। ये महसूल यतीमों और बेवाओं की मदद के लिए लगाया गया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज अलग सुबह एक चौल में मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से 6 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। ब्रांड मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी और मुंबई की फायर ब्रिगेड के मुताबिक घाटकोपर के चिराग नगर में गोशिया चौल में सुबह 3:48 पर यह हादसा पेश आया। शतरंज के सिंक्वीफील्ड कप में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव को हरा दिया है। उनके इस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहली कामयाबी है, जो कि ग्रैंड चेस के उनके दौरे से पहले का मुकाबला है। प्रज्ञानंद शुरू से ही 95 बाजियों के इस मैच में छाए रहे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत सभी मामलों पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने दें। मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखनांदाजी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर सवान आयात पढ़ने पर जोर दिया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया के शॉर्टकट कल्चर के खिलाफ खबरदार किया। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ गई है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम का जज्बा कौमी शनाख्त को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने फ्लाई स्कीमों की खातिर पेट्रोल और डीजल पर यतीम और बेवा सेस नाफिज किया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शदीद बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने से 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट।

0: और ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता

0: और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके

0: में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और आप जानते ही हैं ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। कहते हैं वक्त गुजर जाता है, फिल्में पुरानी हो जाती हैं, सितारे पर्दे से दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी तारीख की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हम जिस सितारे को लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं जिनके आंखों के सामने पूरा एक दौर लौट आता है। आज की जो महफिल सजेगी वो इसी खूबसूरत सितारे के साथ सजेगी और ये है हमारी भारतीय सिनेमा की एक खूबसूरत सी अभिनेत्री। वो कौन है ये तो आप गीत सुनने के बाद अंदाजा लगा ही लेंगे हमेशा की तरह। और जब आप अंदाजा लगा ही लेते हैं तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ना है अपने संदेशों के जरिए। संदेश भेजने का जो माध्यम है वो है मेल, और मेल ID है IPRadioDelhi@gmail.com। तो ये है वो रास्ता जिसके जरिए आप इस महफिल में अपनी तरफ से भी 4 चांद लगा सकते हैं। फिलहाल सुनिए ये खूबसूरत सा गीत और बताइए हमें कि आज हम किस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं।

आपके संदेश हमें बता रहे हैं कि आपने सितारे को पहचान लिया है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जिनकी आंखों में मासूमियत थी, मुस्कान में सादगी थी और अभिनय में एक खास सहजता थी, और ये अभिनेत्री थी अनीता राज। 80 के दशक की फिल्मों में अनीता राज का नाम दर्शकों के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं था। 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, उनके फिल्मी सफर की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी और इस फिल्म ने उन्हें एक यादगार पहचान दे दी थी। उनके सफर की शुरुआत भी उसी गीत की तरह थी जो एक खूबसूरत सुगंध बनकर हमेशा महकती रही। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कलाकार के करियर की शुरुआत ही ऐसी होती है कि वो आने वाले सफर की दिशा तय कर देती है, और अनीता राज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुनते हैं उन्हीं की एक और खूबसूरत सी फिल्म गुलामी से ये गीत, जो बहुत सुपर डुपर हिट रहा।

दिग्गज अभिनेता जगदीश राज की बेटी अनिता ने 1991 में फिल्म प्रेम गीत से कदम रखा। धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और ऋषि कपूर, अनिता ने उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ सुपरहिट जोड़ी बनाई। एक से एक गीत इनके ऊपर पिक्चराइज किए गए हैं और ये एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं है बल्कि आज के दौर में वो फिटनेस की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी बन चुकी हैं। 60 की उम्र पार करने के बाद भी उनका जो वर्कआउट रूटीन है वो देखकर लगता है कि ये 25 साल की एक युवा है। वो खूबसूरती, वो चमक और वही फिटनेस आज भी उन्होंने बरकरार रखी है। तो एक और खूबसूरत सा गीत जो इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था आप सबको सुनवाती हूँ।

फिल्म नौकर बीबी का ये गीत जो आप सुन रहे हैं, ये हमने इसी फिल्म से लिया है जिसमें धर्मेंद्र, रीना रॉय, राज बब्बर और अनीता राज जैसे कलाकारों ने एक खूबसूरत सा अभिनय किया था। और ये फिल्म अपने हास्य और मनोरंजक अंदाज के लिए जानी जाती है। अनीता राज जिन्होंने एक से एक सुपरस्टार के साथ काम किया, और इसके बाद 1983 में इनकी एक और फिल्म आई थी, नाम था जरा सी जिंदगी, जिसमें उन्होंने कमल हसन के साथ काम किया था। और ये फिल्म दक्षिण भारतीय निर्देशक के बालाचंद्र की हिंदी फिल्मों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी भी थी। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद हम चंद लाइन इनके लिए यही कहेंगे कि फिल्मी दुनिया में हर कलाकार के सफर में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो उनके करियर को एक नया मोड़ दे देती हैं। अनीता राज के लिए भी 1985 की फिल्म गुलामी एक ऐसी ही फिल्मों में से एक है। जेपी दत्ता की इस फिल्म में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, रीना रॉय और अनीता राज जैसे शानदार कलाकार थे। दर्द जब आवाज बन जाए तो गीत जन्म लेता है, और जब गीत में एहसास उतर जाए तो वो बरसों बाद भी दिल में जिंदा रहता है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

प्रोग्राम में चार चांद भी नहीं लगते अगर आपके संदेश शामिल नहीं होंगे। अब वक्त है कि उन संदेशों को हम शामिल कर लें। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इटावा से। अगला संदेश है तेलंगाना निजामाबाद से शिकल्ला बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना जी का है। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह दलजीत राजदीप गुरनूल जी हमारे साथ हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार हैं। संबलपुर काकेड़ से फागुन राम ज्योति ओजस्वी हैं। बचिंगखेड़ा पंजाब से मिंचू टोमस पिंकी लवली जुड़े हुए हैं। ये संदेश अजीत भापसर जी का आया हुआ है और उन्होंने हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी हमसे शेयर की है। वीरंगांव गुजरात से ये प्रमिला जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तुलसी मस्किन जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इश्क मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी से तुलसी जी का एक और संदेश है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद जैद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। अगला संदेश ताज मोहम्मद जी का है। ये आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़े हैं। प्रकाश वर्मा जी प्रिंस के साथ छत्तीसगढ़ पराली से जुड़े हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ जालंधर से हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी अनीता जी सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और अगला जो संदेश आया है हमारे पास ये किसका है देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे संदेश आपके रिपीट भी हो रहे हैं। इंद्रभान सिंह हमारे साथ चिरमिरिया कुलारसी कालरी से कुरासिया कालरी से अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी के साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरिया जी देव तुषार जी ये डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। पंकज शर्मा जी का हमारे पास संदेश आया है। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, ये जगह का नाम स्पष्ट नहीं है। अगला जो संदेश है वो पहुंचा है हमारे पास गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंगील दलजीत जी का। रोजी डी कास्टा ये जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ है। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से विनोद खड़से जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

जी दोस्तों, अनीता राज के फिल्मी सफर में एक से एक यादगार पड़ाव आए। अब याद कीजिए उस खूबसूरत सी हीरोइन को, बड़ी बड़ी आंखें, सादगी से भरा चेहरा और पर्दे पर सहज भावनाएं, यही उनकी खूबसूरती खूबसूरती थी। वो सिर्फ एक ग्लैमर का चेहरा बनकर नहीं आई, बल्कि अलग अलग तरह की भूमिकाओं में भी नजर आई। चेहरे बदलते रहे, दौर बदलते रहे, मगर यादों के रंग कहाँ बदलते हैं। एक गीत बजता है तो अचानक बीते हुए पल फिर से मुस्कुरा देते हैं। तो बस यही थी आज हमारी संगीतमय यात्रा, जिसमें हमारे सितारा थी अनीता राज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन अभी कहीं आपको जाना नहीं है, क्योंकि 3 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे खूबसूरत सा प्रोग्राम, नाम है मैचिनी मेलोडीज़। फिलहाल इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको इस प्रोग्राम में यहीं छोड़े जा रही हूँ।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आइए अब आनंद लेते हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का। ये प्रोग्राम जिसमें हम आपको सुनहरे दौर में ले जाते हैं, तो आज भी उसी सुनहरे दौर में ले जाएंगे। वो दौर कौन सा था? वो दौर था 1950 और 1960 का। कहते हैं ना कि कुछ गीत पुराने होकर भी पुराने नहीं होते, कुछ चेहरे पर्दे से उतर कर भी दिल से नहीं उतरते, और कुछ फिल्में उस फिल्में वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी यादों में हमेशा नई बनी रहती हैं। तो आज हम लौटेंगे हिंदी सिनेमा के उस दौर में जिसे भारतीय फिल्म संगीत और सिनेमा का सुनहरा दौर कहा जाता है, 1950 और 1960 का दशक। वो समय जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनमें समाज था, रिश्ते थे, संघर्ष था, प्रेम था और जिंदगी की सच्चाई थी। तो आइए यादों की इस फिल्मी पोटली को खोलते हैं और सुनते हैं पहला गीत। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अब इस सफर में एक बार दोबारा आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट संजू पांडे, और आप भी मेरे साथ इस सफर के हम सफर बन सकते हैं। मेल भेजने का जो पता है वो है ipradiodelhi@gmail.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से

50 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए बदलाव का समय था। देश नया नया आजाद हुआ था और फिल्मों में भी नए भारत की तस्वीर दिखाई देने लगी थी। गरीब और आम आदमी की जिंदगी, सामाजिक असमानता, सपने और संघर्ष, ये सब कहानियों का हिस्सा बनने लगे थे। और इसी दौर में आई कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म चोरी चोरी से।

हिंदी सिनेमा के 50 और 60 के दशक की बात जब भी हम करते हैं तो लगता है जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां हर गीत में एक कहानी थी, हर धुन में एक एहसास था और हर फिल्म की जिंदगी की कोई ना कोई उस फिल्म में सच्चाई छिपी हुई थी। वो दौर जब रेडियो पर बजता कोई गीत घर घर की पहचान बन जाता था, जब गीतकार के शब्द दिल की आवाज़ बनते थे, संगीतकार की धुनें यादों का हिस्सा बनती थी और गायक गायिकाओं की आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी।

0: 50 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव और प्रयोग का दौर था। देश आजाद हो चुका था और फिल्मों में भी नए भारत की तस्वीर दिखाई देने लगी थी। आम आदमी के सपने, संघर्ष, गरीबी, प्रेम, रिश्ते और सामाजिक बदलाव, इन सबको फिल्मों ने अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे सितारे इस दौर के बड़े नाम बनकर उभरे। राज कपूर की फिल्मों में आम आदमी की मासूमियत और संघर्ष दिखाई देता था, वहीं दिलीप कुमार ने अभिनय को एक नई गहराई दी तो देव आनंद साहब की जो रोमांचिक और चुलबुली अदाएं थी उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। और इन सब के बीच जो संगीत था, जो उस दौर का संगीत था, वो उस दौर के उसका जो दौर था वो उस दौर की आत्मा थी।
1: ये रातें, ये मौसम।

मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कुंगलानी, जगमोहन प्रजापति और किरण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं। दिग्दर्शन गौर जी मेरठ केंट से कविता गौर के साथ प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। अगला संदेश तुलसी मस्कीन जी का है, जो कि गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, बीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता केशो जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भापसर जी लिख रहे हैं कि पहला गीत जो पतिता फिल्म से सुनाया वो बहुत अच्छा लगा और बाकी के गीत भी बहुत मधुर लग रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमिला भापसर जी के साथ बिरन गांव गुजरात से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्यों का है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी खूबसूरत गीत हैं हमारे पिटारे में। फिलहाल एक और खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

60 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए रंगों, रोमांस और मधुर संगीत का दौर था। फिल्मों में तकनीकी बदलाव आने लगे, रंगीन फिल्मों का आकर्षण बढ़ा और पर्दे पर नायक नायिकाओं की नई पीढ़ी दिखाई देने लगी। शम्मी कपूर की उछलती कूर्ती ऊर्जा, राजेंद्र कुमार का रोमांटिक अंदाज, धर्मेंद्र की दमदार मौजूदगी, साधना की खूबसूरती, वहीदा रहमान की गरिमा और आशा पारेख की चंचलता, इन सब ने 60 के दशक को खास बना दिया। तो 50 और 60 का जो दशक था वो अपने अपने हिसाब से एक अलग ही बुलंदी और एक अलग ही रंग में रंगा हुआ था।

संदेश आया है, मैचिनी मेलोडीज प्रोग्राम में आपके सभी गीत लाजवाब हैं, 50 के दशक के बहुत मीठे गीत और साइलेंट संगीत, नींद आ जाए ऐसे मधुर गीत हैं जी। लेकिन सोइए मत, क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे हैं आपके इस मनपसंद इंद्रप्रस्थ चैनल पर। लिखते हैं बीरनगान गुजरात से अजीत भापसा, प्रमिला जी और तुलसी मस्किन जी लिख रहे हैं कि मैचिनी मेलोडीज में पेशकश सुपर लवली सॉन्ग से, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बबलेश पवार जी लिख रहे हैं कि आपके लिए कुछ लाइन है, हवा में घुलती है मिसरी जब वो सुर सजाती हैं, जो पांडे की आवाज़ हर दिल को छू जाती। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तारीफ करने के लिए। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लाइनें आपने लिखी हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। जसवीर जी हमारे साथ डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से, जतिंदर कौर गुरप्रीत लवप्रीत के साथ जुड़े हुए हैं। और ये संदेश जो हमारे पास आया असलम खान जी का है, गांव

राजू बिजनौर असलम जी हमारे साथ जुड़े हुए, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और यही कहेंगे कि आज हमने याद किया 50 और 60 के दशक के उस सुनहरे फिल्मी सफ़र को, जहां सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं चलता था, लोगों के दिलों में बसता था। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए सफ़र के साथ। अब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

आम दिन नहीं है। आज का दिन हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए आए हैं जो दरअसल किसी एक दिन, एक तकरीब या एक नस्ल तक महदूद नहीं। ये मौजू हमारे आज, हमारे मुस्तकबिल और हमारे आने वाली नस्लों से ताल्लुक़ रखता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि नौजवान महज उम्र का एक मरहला नहीं, बल्कि तवानाई, ख्वाब, जद्दोजहद, तख्लीक और तब्दीली का नाम है। दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, जब भी माशरे में कोई तब्दीली आई है, जब भी किसी कौम ने अपने हालात बदलने का फैसला किया, उन सब के पीछे नौजवानों की कुव्वत, जोश और किरदार मौजूद था। मेरे नज़दीक नौजवान सिर्फ कम उम्र बच्चे नहीं हैं, नौजवान वो हैं जिनके अंदर सवाल करने की जुरत, सीखने की ख्वाहिश, ख्वाब देखने की सलाहियत और हालात बदलने का हौसला जिंदा हो। बाज़ लोग उम्र के एतबार से जवान होते हैं मगर सोच के एतबार से बूढ़े हो जाते हैं, और बाज़ लोग उम्र के आखिरी हिस्से में भी अपने अंदर एक नौजवान का हौसला रखते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नौजवानी सिर्फ उम्र नहीं है। अगर देखा जाए तो आज का नौजवान गुज़िश्ता नस्लों के मुकाबले में बेशुमार सहूलतों का मालिक है। उसके हाथ में मोबाइल है, दुनिया उसकी उंगलियों पर है, मालूमात का एक समुद्र उसके सामने मौजूद है, वो चंद सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की खबर हासिल कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या मालूमात की कसरत ने हमारे अंदर इल्म भी पैदा किया है? जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं मगर किताब के चंद सफ़ात पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, या यूं कहिए कि हम दूसरे की ज़िंदगियों को देखते हैं मगर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए वक्त नहीं है। हम दूसरों की कामयाबी पर तबसरा तो करते हैं मगर अपनी नाकामी से सबक हासिल नहीं करते। ये दौर हमें एक बहुत अहम मौका दे रहा है और एक इम्तिहान भी, जैसा कि आज की टेक्नोलॉजी सहूलत है या आजमाइश। असल सवाल यह है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है। मेरा सोचना यह है कि मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी हमारे मोबाइल के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट हमारी मालूमात में इजाफा करे, हमारी तवज्जो और वक्त को ना निकल जाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान डिजिटल यूज़र से आगे बढ़कर डिजिटल तख्लीक़कार बने। आसान अल्फाज में, सिर्फ वीडियो देखने वाला नहीं बल्कि वीडियोस बनाने वाला किरदार बनकर सामने आए। सिर्फ दूसरों की पोस्ट पर तबसरा करने वाला नहीं, अपने इल्म और सलाहियत से माशरे में मस्बत गुफ्तगू पैदा करने वाला बने। नौकरी तलाश करने वाला नहीं, रोजगार पैदा करने वाला बने। हम अक्सर कहते हैं कि हम सबको तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि तालीम का मकसद क्या है। जैसे सिर्फ डिग्री हासिल करना, अच्छी मुलाजमत हासिल करना या एक बेहतर इंसान बनना। तालीम अगर इंसान को इल्म दे मगर किरदार ना दे, तालीम अगर इंसान को कामयाबी दे मगर इंसानियत ना दे, तो मुजिर साबित हो सकती है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम उसको तालीम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वो तालीम के लिए सिर्फ डिग्री हासिल करता है, सिर्फ अच्छी मुलाजमत हासिल करता है या फिर एक बेहतर इंसान भी बनता है। आज हमें ऐसे नौजवान चाहिए जो ज़हीन भी हों और ज़िम्मेदार भी हों, जो जदीद टेक्नोलॉजी जानते हों मगर अपनी तहजीब से भी वाकिफ हों, जो दुनिया के साथ चल सकते हों मगर अपने इकदार को भी भूले ना हों। क्योंकि कौमें सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान और अफसर पैदा करने से तरक्की नहीं करती, कौमें अच्छा इंसान पैदा करने से तरक्की करती हैं। मेरे सुनने वालों, आज नौजवान के सामने सबसे बड़ा मसला शायद वसाइल की कमी नहीं बल्कि सिमत की कमी है। हमारे पास सलाहियत है मगर कभी कभी मकसद नहीं होता। हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन उससे भी एक अहम सवाल यह है कि हम माशरे के लिए क्या करना चाहते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है तो हमारी कामयाबी भी महदूद हो जाती है। एक नौजवान की असल कामयाबी यह है कि उसकी ज़िंदगी से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी रोशनी पैदा हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इम्तिहान में नाकामयाब हुए हैं तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपकी सलाहियत अपनी जगह कायम है। याद रखिए, गिरना शिकस्त नहीं, गिरे रहना शिकस्त है। हम अक्सर नौजवानों से तवक्को करते हैं कि वो मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम नौजवानों को क्या माहौल दे रहे हैं, क्या हम उन्हें बात करने की आज़ादी देते हैं, क्या हम उनकी सलाहियतों को पहचानते हैं, क्या हम उनकी सिर्फ तनकीद करते हैं या रहनुमाई भी करते हैं। नौजवानों को सिर्फ नसीहत नहीं चाहिए बल्कि उन्हें मौका, एतमाद, तरबियत और मजबूत रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है। वालदैन, असातिज़ा, मुआशरा, सबकी ज़िम्मेदारी है कि नौजवानों के लिए ऐसे मौके पैदा हों जहां वो अपनी सलाहियतों को बरोएकार ला सकें। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि आप किसी कौम का सिर्फ मुस्तकबिल नहीं बल्कि आप इस कौम का आज भी हैं। नौजवान मुल्क बनाते हैं, मुल्क की तामीर करते हैं।
हमें ऐसा नौजवान चाहिए।

0: ये जो किताब से रिश्ता रखता हो, सवाल करने से न डरता हो, सच बोलने का हौसला रखता हो, दूसरों के इख्तराब को बर्दाश्त कर सकता हो, टेक्नोलॉजी को मस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल करे, अपने वक्त की कदर करे और अपनी नाकामी से सीखे और इन सब से बढ़कर अपने मुल्क, अपने माशरे और इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो। एक ख़ास बात कि नौजवान को अगर वाकई अपनी ज़िंदगी बदलनी हो तो उसे किताब से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मालूमात दे सकता है मगर किताब आपको गहराई देती है। एक मुख्तसर वीडियो आपको मुतासर करती है मगर किताब आपकी सोच बदल सकती है। हम सोशल मीडिया के मुखालिफ नहीं हैं, फिर भी कहती हूँ कि कुछ वक्त किताब के लिए ज़रूर निकालें। जो नौजवान पढ़ता है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता, वो अपने माशरे की सोच बदलने की सलाहियत रखता है। जागती आंखों से ख्वाब देखें, ख्वाब देखना ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है, उसको मकसद बनाना होगा, मकसद का मंसूबा तैयार करना होगा। जैसे अगर आप शायर या अदीब बनना चाहते हैं तो आज से ही मुताला शुरू कर दीजिए। अगर आप माशरे की खिदमत करना चाहते हैं तो आज ही किसी एक इंसान की मदद से आगाज कर दें। बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदम से शुरू होती है। आज आलमी यौम नौजवान के मौके पर मैं नौजवानों से एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आपके पास दुनिया बदलने का मौका ना भी हो तो क्या आप अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? एक ईमानदार इंसान एक ख़ानदान बदल सकता है, एक अच्छा उस्ताद एक नस्ल बदल सकता है, एक बाकिरदार नौजवान एक माशरे की सोच बदल सकता है और एक बाशऊर नस्ल एक कौम की तकदीर बदल सकती है। मोहतरम सामईन, आज का ये दिन सिर्फ मुबारकबाद देने का दिन नहीं है, ये खुद एहतसाबी का दिन है जिसमें नौजवान और माशरा दोनों शामिल है। आइए आज हम अहद करें कि हमने नौजवानों को सिर्फ रोज़गार नहीं मकसद देंगे, सिर्फ सहूलत नहीं जिम्मेदारी का शऊर भी देंगे, और नौजवान खुद ये अहद करें कि वो अपनी सलाहियतों को ज़ाया नहीं करेंगे, अपना वक्त बेमकसद नहीं गुजारेंगे, नफ़रत के बजाय मोहब्बत, मायूसी के बजाय उम्मीद और शिकायत के बजाय अमल को अख्तियार करेंगे। अगर नौजवान बेदार है तो कौम जिंदा है, अगर नौजवान बाकिरदार है तो कौम महफूज है, और अगर नौजवान अपने ख्वाबों को अमल में बदलना सीख लिए तो कोई ताकत इस कौम की तरक्की नहीं रोक सकती। आखिर में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगी कि उठो, वक्त तुम्हें आवाज़ दे रहा है, मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतज़िर है, उठो कि अगले बाब में तुम्हारा किरदार अभी लिखा जाना बाकी है। अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान नौजवानों को इल्म, किरदार, हिम्मत, बसीरत और खिदमत इंसानियत का जज्बा अता फरमाए। तमाम नौजवानों के लिए आलमी यौम नौजवानान मुबारक हो।
1: आलमी यौम नौजवानान, अभी आप इस मौजू पर मोहतरमा चश्मा फारूकी के ख्यालात सुन रहे थे।

0: अभी आप वतनी नगमा सुन रहे थे। सामईन, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान ने सिर्फ एक ज़रिया इजहार का काम नहीं किया, बल्कि वो खुद एक मुजस्सम मुजाहिद आज़ादी बनकर अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़ी रही। जंग आज़ादी में उर्दू के शुरा ने अपनी शायरी को तलवार की ज़बान अता की। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, इकबाल, जोश, जिगर मुरादाबादी और हसरत मोहानी जैसे शुरा ने अपनी नज़मों से नौजवानों के खून में गर्मी पैदा की। तहरीक आज़ादी में सबसे मकबूल नारा इनकलाब जिंदाबाद था, जो मुल्क की आज़ादी का एक इस्तारा बन गया था। वो उर्दू के ही नामवर शायर मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी उर्दू अदब के एक मुनफरिद गज़लगो शायर, निडर सहाफ़ी और हिंदुस्तान के एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। हसरत मोहानी की सियासी और समाजी ज़िंदगी कुर्बानियों और उसूल परस्ती से इबारत है। मुजाहिद आज़ादी हसरत मोहानी, आइए इस मौजू पर सुनते हैं जनाब दानिश हुसैन खां से उनकी ये तकरीर।
1: आज़ादी और वतनियत एक ऐसी शय है जिसके लिए हर इंसान कोई ना कोई कीमत अदा करता है। हर इंसान आज़ाद फ़जा चाहता है और अपने वतन को आज़ाद देखना चाहता है। उस आज़ादी के लिए बहुत से मुजाहिदों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और अपने वतन की अज़मत को कायम रखा। वतन की मोहब्बत एक अजीम मोहब्बत होती है जिसके लिए एक मर्द मुजाहिद अपनी ज़ात को खाक में मिला देता है। वतन के लिए ज़िंदगी कुर्बान करने वालों को मुजाहिद आज़ादी कहा जाता है। जब दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है तो एक सच्चा और अजीम मुजाहिद जन्म लेता है। उन्हीं अजीम मुजाहिदों में एक अहम नाम हसरत मोहानी का है। आज़ादी एक ऐसी शय है जिसके लिए इंसान कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहता है और अपनी जान की बाजी लगा देता है। एक सच्चे मुजाहिद को उस सरजमी से मोहब्बत होती है जहां पहली बार उसने अपनी माँ का चेहरा देखा था, अपने दोस्तों के साथ खेला था, जहां उसने तालीम हासिल की थी, जहां उसने बुजुर्गों की शफकत को महसूस किया था। यही एहसास वतनियत को जन्म देता है और उसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए एक मुजाहिद अपनी जिंदगी को हंसते हंसते वतन पर निछावर कर देता है। मोहान की सरजमीन से पैदा हुआ एक गौहर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है और हर लम्हा अपने मुल्क को गैरों के पंजे से आज़ाद कराने का ख्वाब देखता है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देता है। यही वो नारा है जिसने आज़ादी के परवानों के दिलों में इनकलाब बरपा कर दिया। ये वही नारा है जिसको भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी का नज़्मुल ऐन बनाया था। ब्रिटिश हुकूमत को ख्वाब से जगाने और अपनी आज़ादी की सदा को बुलंद करने के लिए भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका था, तब उस नारे की गूंज ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। ये वही नारा है जो हिंदुस्तान के हरेक बाशिंदे की जबान पर जदोआम है। जब भी कोई ऐसा काम करता है जिसमें इनकलाब की गूंज सुनाई देती है तो वो इस नारे का इस्तेमाल करता है। हसरत वो मर्द मुजाहिद है जिसने अदब की दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया था।

हसरत ने उर्दू की गौहरो नायाब सिंफ गज़ल की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब पैदा किया कि जब गज़ल लड़खड़ा रही थी, वो तनावर दरग जब अपने बिखरे वजूद को समेटने की कोशिश कर रही थी, तब हसरत ने उसकी बुनियाद को संभाला और अपने तगज़ुल के ज़रिए उसकी नोक पलक को संवारा और ऐसी गज़लें लिखीं जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हसरत ने गज़ल के वक़ार को मजरूह होने से बचाया और उसकी खोई हुई आबरू उसको वापस लौटाई। हसरत जुरत व बेबाकी की जिंदा मिसाल थे। हक गोई और बेबाकी इस कदर थी कि हक बात करने से कभी हिचकिचाते नहीं थे और यही खूबी एक मर्द मुजाहिद का वस्फ है। हसरत ने उर्दू मुअल्ला से वो काम लिया है जो उनके मकसद की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया है। हसरत की बेबाकी और जुर्रत उनके उर्दू मुअल्ला में कदम कदम पर देखने को मिलती है। अगर ये कहें तो बेजा ना होगा कि हसरत के इनकलाबी फिक्र को उर्दू मुअल्ला ने जिला बख्शा और तराबलस के सपोर्ट में इटली के खिलाफ बायकाट का फतवा शाया किया। मिसाल के तौर पर ये शेर देखें, बेकार है इजहार गजब अहले सितम का, डरता हूँ मैं उनसे न डरूंगा न डरा हूँ, शाहों के तकबर से भी दबकर न रहूंगा, किस बागए खास का आखिर में गदा हूँ। ये हसरत की ही हिम्मत और बेबाकी थी कि हुकूमत की आंख से आंख मिलाकर बात करते थे और ऐसी तकरीर करते थे कि दरोबाम हिला देते थे। स्वदेशी तहरीक भी हसरत की ही देन थी और वो स्वदेशी स्टोर भी चलाते थे, लेकिन जेल से रिहाई के बाद और हुकूमत की डर से लोगों ने हसरत का साथ छोड़ दिया था। हमदर्दी तो दूर रही, लोग हसरत के साए से भी बचने लगे। कुछ हमदर्दों ने हसरत से सियासत से दूर रहने की तलकीन की, लेकिन हसरत के मिजाज में इनकलाबी रूह परवान चढ़ रही थी। वो मर्द मुजाहिद उन हालात से डरा नहीं बल्कि अपने अजायम पर कायम रहा और अपने अज़्म और हौसले के साथ आने वाले हालात का सामना किया और अपनी मंजिल की सिमत सफर करते रहे। करके वही रहेगा जो दिल में ठान ली है, करके वही रहेगा जो दिल में ठान ली है, रोशन है हम पे हसरत अजमे उमूर तेरा। हसरत की रगों में इनकलाबी खून था और वो हिंदुस्तानियों की इज्जत व नामूस की हिफाजत करते थे और उसी जज्बे ने उनके अंदर इनकलाब बरपा किया। अलीगढ़ की तहजीब और इनकलाबी शान ने हसरत के अंदर वो हौसला पैदा किया जिसकी मिसाल दौरान तालीम हमें देखने को मिलती है। MAO कॉलेज की तालीम के दौरान ही हसरत के दिल में आज़ादी की लगन पैदा हो गई थी और उसकी वजह कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल रहे। उस प्रिंसिपल की ज्यादतियों ने हसरत के अंदर जज्बाए अमल को उभारा और उनके अंदर इनकलाबी रूह पैदा हुई। हसरत ने अपने मजमून में खुद इस बात की तरफ इशारा किया है कि कॉलेज के जमाने में एक कांस्टेबल ने गुलाम हुसैन को अहाताए नुमाइश में इस बात पर जाने से रोक दिया कि वहां सिर्फ साहेब लोग ही जा सकते हैं और इससे पहले इस तरह की कोई पाबंदी सुनने में नहीं आई थी। इसलिए गुलाम हुसैन ने कांस्टेबल की इस हरकत पर एहतजाज किया और उसको धक्का देकर अंदर चले गए। ये मामला जब प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने आया तो उन्होंने तालिब इल्मों का साथ देने के बजाय पुलिस की बात का एतबार किया और गुलाम हुसैन को माफी मांगने और 40 रुपया जुर्माना देने को कहा गया। और आखिर में ज्यादती की इंतहा ये रही कि प्रिंसिपल तलबा के साथ बेरहमी से पेश आया और उनको कॉलेज से भी निकाल दिया। हसरत के लिए ये बात दुख और तकलीफ का बास थी। यूरोपियन इख्तदार की मुदाखलत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। हसरत को भी 3 बार कॉलेज से निकाला गया। यही वजह थी कि उस मर्द मुजाहिद ने पहले ही तय कर लिया था कि अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। यही वजह थी कि हसरत ने आज़ादी कामिल की तमन्ना की और 1907 में एक तजवीज़ दफाई मज़ाहमत से मुतालिक कांग्रेस के इजलास में पेश की जिस पर ऐलान किया गया कि अगर अंग्रेज 31 दिसंबर 1921 तक बरतानिया हुकूमत ने हिंदुस्तान को आज़ाद ना किया तो तर्क मवालात की तहरीक शुरू कर दी जाएगी। उस तहरीक में हसरत ने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया और मुल्क की आज़ादी के लिए कोशा रहे। मुल्क की आज़ादी और कांग्रेस के इजलास की रुदात को उर्दू मुअल्ला में शाया करते रहे। उर्दू मुअल्ला अपनी अशात की इब्तिदा से ही अंग्रेजों के लिए दर्द सर बन गया था और वो चाहते थे कि उसको बंद कर दिया जाए। 1908 में हसरत ने मिस्र में अंग्रेजों की पॉलिसी के उन्वान से मजमून शाया किया जिस पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा और मामला को बगावत करार देकर हसरत को 2 बरस की सजा सुनाई गई। हसरत ने जेल की सजा मुकम्मल करने के बाद वहां के हालात और वाकयात को

अभी आप गजल सुन रहे थे, कलाम था हसरत मोहानी का और आवाज से सजाया था जितेंद्र सिंह ने। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतजार अली सैफी ने। और अब अपने मेजबान मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने को ही कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

听众朋友们，我们刚播送了一个特写，现在我们播送一篇短片和对不起一首歌曲，请你们享受。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। नमस्कार विदुषी।
2: नमस्कार।
1: और आज की शुरुआत करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप से, जो कि 15 अगस्त से होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में। और भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम पदक की दावेदार है और इस बार उम्मीदें काफी मजबूत हैं, दमदार हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने कड़ी तैयारी की है और पिछला प्रदर्शन बताता है कि भारतीय टीम के लिए ये अच्छे संकेत हैं और भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा भी अन्य खबरों में बात होगी सुब्रतो कप पे, डोरेंट कप पे, इसके अलावा फेंसिंग और टेबल टेनिस पर भी चर्चा करेंगे। तो विदुषी क्यों ना शुरुआत करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप से।

0: हॉकी विश्व कप का मंच सज चुका है। अभी विश्व हॉकी पर राज करने वाले भारत के लिए यह सिर्फ एक और विश्व कप नहीं बल्कि 5 दशक से चले आ रहे इंतजार को खत्म करने का मौका है। भारत ने हॉकी विश्व कप में 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1971 में कांस्य, 1973 में रजत और 1975 में एकमात्र मिला स्वर्ण पदक शामिल है। और विश्व कप में यही वह लम्हा था जब पिछली बार भारतीय हॉकी टीम ने पोडियम फिनिश किया था। आज 51 साल हो गए, लेकिन उम्मीद है तो हौसला है, और हौसला है तो जज्बा है, और जज्बा है तो जुनून भी रगों में रक्त की तरह दौड़ेगा। कुछ ऐसे ही जज्बात और संकल्प लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय खिलाड़ी भी 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप में सपनों को साकार करने उतरेंगे। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में मिले लगातार 2 पदकों ने 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। अब तो बस विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम की परवाज देखनी है। तो आइए चलते हैं यादों के सफर पर और आपकी मुलाकात कराते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र और 1975 के कुआलालंपुर में हुए फाइनल में विजयी गोल करने वाले अशोक ध्यानचंद से।
1: आज से 51 साल पहले भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया कुआलालंपुर में फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर देश को एक हमने अपनी अपना तोहफा दिया था। एक भारतीय टीम जीतती है, उसके 11 खिलाड़ी होते हैं जिनका फर्ज होता है कि टीम को आगे बढ़ाना, आगे जिताना। फाइनल गोल जो जीतने वाला था, मेरी हॉकी स्टिक से निकला, उसका मुझे थोड़ा सा खुद के अपने आप से मुझे एक अच्छा लगता है। लेकिन वो देश की जीत थी और वर्ल्ड कप में हमारी 3वीं लगातार पोडियम पर पार्टिसिपेशन था। 71 वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल, 1973 एम्स्टर्डम जिसमें भारत की टीम 2 गोल की लीड लेने के बाद सेकेंड हाफ में हॉलैंड से हार जाती है टाई ब्रेकर में। लॉन्गेस्ट मैच जो खेला गया है खेल इतिहास में वो 1973 वर्ल्ड कप का था, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम, फिर सडन एक्स्ट्रा टाइम, उसमें फिर भारत की टीम की टाई ब्रेकर में हार, क्योंकि उस वर्ल्ड कप को भारत की टीम को जीतना चाहिए था, बट वी लॉस्ट। और यह 75 वर्ल्ड कप हमारे लिए 73 की हार का बदला लेने

0: कमिटमेंट, और मैं समझता हूँ वो एक जीत हमारे लिए, जीत ही नहीं थी बल्कि एक सेकंड चैप्टर था इंडियन हॉकी के आगे बढ़ने का।
1: तो अब लगता है कि भारतीय हॉकी टीम सही ट्रैक पे आगे बढ़ रही है और इस बार विश्व कप में नया कमाल कर सकती है।
0: कौन सी पोजीशन आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को पूरा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय टीम पोडियम पर खड़ी होगी और खड़ा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यह टीम एक संतुलित टीम है, इसके अंदर सीनियर खिलाड़ियों का समावेश और हमारे जूनियर और जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इसके अंदर, वो सब इसके अंदर मौजूद हैं।
1: मैं जो हमारे साथ हैं इंग्लैंड पाकिस्तान वेल्स टीम, पूल कैसा देख रहे हैं आपके?
0: पूल तो हमारे लिए दो टीमें निकलनी है, पाकिस्तान को तो हम हराते ही चले आ रहे हैं फिलहाल, पास्ट में हम उनको हराते चले आए लगातार, हमने कितने मैचेस हराए मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ, और जहाँ जहाँ हम खेले हमने उनको बहुत अच्छी बड़े मार्जिन से डिफीट दिए, लेकिन ये वर्ल्ड कप है और मैं समझता हूँ भारतीय खिलाड़ी जो है वो इस मैच को उसी तरह से खेलेंगे। वेल्स को जीतना यूरोपियन टीम है दमखम, और वो लोग तो साल भर इंडोर हॉकी और उनके सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई होती है, हमारे साथ भी है, लेकिन उसको हम इजीली नहीं लेंगे। तो है तो टफ, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है, हर टीम जीतने के लिए आती है, अब डिपेंड ये करता है कि आपकी रणनीति, आपका कला कौशल, आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम और आपके जो धैर्य और हौसला है वो कितना मजबूत हर मैच में रहता है जब जब आप खेलते हैं।
2: अभी तक केवल चार ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने हॉकी विश्व कप में तीनों पदकों में भागीदारी की है। इनमें अशोक ध्यानचंद के अलावा रक्षण की मजबूत दीवार कहे जाने वाले माइकल किंडो शामिल हैं। अर्जुन अवार्डी किंडो भारत की फुलबैक थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जिन्होंने 1975 के विश्व कप के सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। 1975 में भारत ने विश्व कप अजीत पाल सिंह की कप्तानी में जीता। उनकी गिनती दुनिया के श्रेष्ठ मिडफील्डरों में होती थी। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भारतीय हॉकी टीम चमत्कार कर सकती है।
1: तो सर अभी जिस तरह टीम प्रदर्शन कर रही है बैक टू बैक ओलंपिक मेडल, तो आपको लगता है कि इस बार वो इंतजार खत्म होगा और हॉकी विश्व कप में हमें पदक मिलेगा?
3: देखिए मुझे उम्मीद तो है, 51 साल हुए हैं और उसके बाद हमारा कोई वर्थ वाइल वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, और अब पहले से टीम कुछ बेटर दिख रही है, इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं बैक टू बैक, तो उम्मीद तो जागी है हमारे दिल में और हम चाहते हैं कि जो 51 साल वाला जो ड्राउट है वर्ल्ड कप के लिए खास करके, वो इसका जिंक्स जो है वो टूटे। हम चाहते हैं कि टीम मतलब कम से कम मेडल तो लेके आए, बाकी जीतना हारना तो दो साइड होते हैं किसी के लिए, लेकिन उम्मीद है कि ये लोग पहले से बेटर है और हम चाहते हैं कि ये मेडल लेके आए, और हमारी मेरी शुभ इच्छाएं मेरे ख्याल बाकी सब जितने हमारी वर्ल्ड कप की टीम है उनकी सबकी इच्छाएं यही है, उनके साथ है कि भाई कुछ करके दिखाओ, हमारा देश आपकी तरफ देख रहा है, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं, हॉकी जो प्रेमी है वो भी इनकी तरफ देख रहे हैं, तो उम्मीद तो है, बाकी देखो क्या होता है, अब कुछ दिन रह गए शुरू होने में, यही कह सकते हैं कि भाई अभी टाइम मिला है आपको जी, डोंट मतलब गंवाना नहीं है इसमें, पूरी कोशिश करो दिल लगा के अपनी पूरी परफॉर्मेंस जो अच्छी हो सके वो दो।
1: सर इस बार नया फॉर्मेट है, पहले ग्रुप दौर की बात करें तो इंग्लैंड पाकिस्तान और वेल्स है, उसके बाद टॉप टू टीमें जाएंगी, तो पूल कैसा देख रहे हैं सर आप?
3: देखो ऐसा है कि जो पहली ये चार टीमों का जो इन्होंने बनाया हुआ है ये पूल, इंग्लैंड तो है ही बहुत अच्छा है, हमारे साथ आसपास ही है, तो वो अच्छी टीम एक तो है ही है, और उसके साथ में वेल्स है और पाकिस्तान है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चलो वेल्स को हमें जीतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर पाकिस्तान पहले भी बहुत बार हम इनके साथ खेले हैं सेमीफाइनल फाइनल में, हम मिलते थे इनको हमारे टाइम पे भी
1: जी,
3: लेकिन अब इनकी टीम बहुत सालों के बाद आई है, तो मैं ये कहता हूँ चाहता हूँ कि हमारी टीम जो इनके साथ जो है उनके साथ दे शुड बी केयरफुल, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है कहीं भी हो
1: जी,
3: टीम उनकी कितनी भी हल्की हो, बेशक उनको हमने एशिया कप में एशियन गेम में हराया है कई जगह पे, दोनों टीमें अच्छी है इंग्लैंड इंडिया
1: जी जी, हरमनप्रीत सिंह की टीम है वो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और कुछ ऐसी यादें जो एक बार फिर से गुदगुदाती हूँ, कितने एक रोमांचित करती हूँ ऐसा कुछ है?
2: फुटबॉल की करें तो सुब्रत कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का 65वां संस्करण 18 अगस्त से दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट 24 सितंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में 160 टीमें शिरकत करेंगी।

0: में तीन श्रेणियों जूनियर बालक, जूनियर बालिका और सब जूनियर बालक वर्ग में शीर्ष सम्मान के लिए चुनौती पेश करेंगी। सुपुर्द कप के 65वें संस्करण के बारे में एयर मार्शल एस शिवकुमार ने कहा,
1: इस टूर्नामेंट में तीन कैटेगरी हैं, अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स और अंडर 15 गर्ल्स का है। अंडर 15 गर्ल्स का गेम तो बेंगलुरु में है और अंडर 17 दिल्ली में है। 107 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें दो बॉयज टीम्स श्रीलंका से भी हैं और राउंड रॉबिन लीग होगा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। दो फाइनल्स दिल्ली में होंगे और एक बेंगलुरु में, और इसमें हमारे टैलेंट स्काउट्स भी हैं जो सेलेक्ट करेंगे कुछ टैलेंटेड बच्चे, और 30 ईच कैटेगरी में 30-30 बच्चों को सेलेक्ट करके एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा एक साल के लिए। और टैलेंट स्काउट्स इन टर्म्स ऑफ द क्लब टीम्स और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का भी है, ताकि अच्छे प्लेयर्स को ढूंढ लिए जाएं, उनको ट्रेन किया जाएं और उनको और नेशनल टीम में खेलने लायक बनाए जाएं। आकाशवाणी के श्रोताओं से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुपर्द कप के मैचेस दिल्ली और बेंगलुरु में देखें, जो मीडिया कवरेज होगा उसको भी देख लें और अपने बच्चों का खेल को प्रोत्साहन करें, और इनफैक्ट ज़्यादा लोग देखेंगे तो फुटबॉल भी एक इम्पॉर्टेंट गेम हो जाएगा। जैसे आप वर्ल्ड कप देखें, आई थिंक आप हमारे फुटबॉलर्स को भी देखना चाहिए।
0: इस अवसर पर हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने भारतीय महिला फुटबॉलर आशा लता देवी लोइंटोंग गबाम से मुलाकात की।
2: ऑब्वियसली क्योंकि ये वुमेन्स टीम के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक साल में हम लोग बहुत सारे मैचेस नहीं खेल पाते बाकी एज ग्रुप में, तो ये भी एक अंडर 17 सब जूनियर जूनियर गर्ल्स टीम भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है, और जितना मैचेस खेलेंगे उतना ही जल्दी ग्रोथ होने में इम्प्रूव होगा, तो ये वुमेन्स फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
3: आपने भी भारत के लिए काफी मुकाबले खेले, काफी मैचेस खेले हैं, जब आप खेलती थी अब वक्त, कितना बदलाव आप फुटबॉल में देख रही हैं?
2: ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो हम लोग टेक्निकली टैक्टिकली हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, वो काफ़ी चेंजेस हैं। हमारे पास एक टाइम पे जीपीएस ट्रैप नहीं थे, अभी जीपीएस ट्रैप आ गया, और भी बेटर कर रहे हैं प्लेयर, और कंपटीशन ज़्यादा मिल रहे हैं और ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहे हैं, तो काफ़ी अभी बेटर है।
3: महिलाओं की फुटबॉल तो बेहतर जा रही है, लेकिन पुरुषों की फुटबॉल धीरे धीरे पीछे जा रही है, क्यों भारत की फुटबॉल अभी उतना ग्रो नहीं कर रही जितनी हम उम्मीद करते हैं, जितनी भारतवासी फुटबॉल के जो फैन है उम्मीद करते हैं?
2: ऑनेस्टली मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स फुटबॉल को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं इसकी फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल में ही खेल रही हूँ, तो मेंस फुटबॉल के बारे में मैं ज़्यादा बोल ही नहीं सकती। उन लोग भी अपने तरीका से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब वुमेन्स फुटबॉल और मेन फुटबॉल में थोड़ा डिफरेंस दिखता है, बट उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।
4: फुटबॉल की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं दुरंद कप की तरफ, जहां ग्रुप स्टेज का रोमांच चरम पर है और नॉकआउट की तस्वीरें साफ होने लगी हैं। श्रोताओं आपको बता दें, ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका ये 135वां संस्करण है, जो अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 25 जुलाई को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 6 ग्रुप यानी कि ए से एफ में बांटा गया है। हर ग्रुप में 4 टीमें हैं और ग्रुप चरण में हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों से एक एक मुकाबला खेल रही है। ग्रुप स्टेज के बाद शीर्ष टीमें नॉकआउट चरण में जगह बनाएंगी। क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे 16 और 17 अगस्त को, जबकि सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे 19 और 20 अगस्त को। टूर्नामेंट का फाइनल 23 अगस्त को कोलकाता में ही विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में होगा। अब आपको बता देते हैं कल खेले गए मुकाबलों के परिणामों के बारे में। ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एफसी 1 को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ग्रुप में अपना दबदबा कायम रख रही है और 3 मैचों में 3 जीत के साथ शीर्ष स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। वहीं अगर ग्रुप ई के मैच की बात करें तो नोंगक्से एसएसएनसीसी ने मुंबई एफसी को एक तरफा मुकाबले में 7-0 से शिकस्त दी। इस बड़ी जीत के बावजूद भी शिलोंग लाजोंग एफसी ग्रुप ई में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब अगर बात करें आज होने वाले मुकाबलों में, तो आज दो अहम मुकाबले हैं। ग्रुप डी में निरोका एफसी का सामना एफसी रंगदाई से होगा। एफसी रंगदाई फिलहाल ग्रुप डी में शीर्ष पर है और दो मैचों में दो जीत दर्ज कर चुका है। इसके अलावा मैच होगा ग्रुप बी में मोहम्मदन

0: एससी और इंडियन आर्मी एफटी जो आमने सामने होंगी। इंडियन आर्मी एफटी ने अब तक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं और ग्रुप बी में शीर्ष स्थान पर है। अब अगर मौजूदा ग्रुप स्टैंडिंग की बात करें तो तस्वीर कुछ इस तरीके से है कि ग्रुप ए में शीर्ष पे है मोहन बगान सुपर जायंट, 3 मैच और 3 जीत। ग्रुप बी में इंडियन आर्मी एफटी, 2 मैच 2 जीत। ग्रुप सी में एससी दिल्ली, 3 मैच 3 जीत। ग्रुप डी में एफसी रंगदाई, 2 मैच 2 जीत। ग्रुप ई में शिलोंग लाजोंग एफसी, 2 मैच 2 जीत। और ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, 3 मैच 3 जीत। इनमें मोहन बगान सुपर जॉइंट, एससी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपने अपने सभी मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की है। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप डी में आज होने वाले मुकाबले जो हमने आपको बताया शीर्ष स्थान की स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। तो दुरंत कप 2026 अब ग्रुप चरण के अंतिम मोड़ पर है और जैसे जैसे मुकाबले खत्म हो रहे हैं नॉकआउट की तस्वीरें साफ होती जा रही है। अब नजरें आज के मुकाबलों और क्वार्टर फाइनल्स की ओर हैं जहां खिताब की असली दौड़ शुरू होगी।
1: विदुषी, हर घर तिरंगा रैली, साइकिल रैली का आयोजन भी आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया और जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत रहा, और यहां माई भारत के यूथ वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया और पूरे देश, पूरे माहौल को एक देशभक्तिपूर्ण बना दिया। तो पेश है अभिनव की ये खास रिपोर्ट।
2: हर घर तिरंगा।

देश भर में फैले जन आंदोलन का रूप ले लिया। सोशल साइटों से लेकर गली गली मोहल्ले तक लहराता हुआ तिरंगा दिखने लगा। भारतीय आवाम के गर्वीले चेहरे दिखने लगे। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कायदे कानून में समय समय पर जरूरी संशोधन किए गए। इन संशोधनों ने भी इस अभियान में जनता की भागीदारी को सहज सरल बनाया। आम आदमी राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगा और इस तरह हर घर तिरंगा अभियान का दायरा बढ़ता गया बढ़ता गया। बताते चलें कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि इसका जो मौजूदा स्वरूप है उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तीन रंगों के प्यारे इस हमारे तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरा रंग हैं। इन रंगों का अपना महत्व है, इसके अपने प्रतीक हैं। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह हमारे साहस, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग सत्य, शांति और पारदर्शिता का संदेश देता है, जबकि झंडे के निचले हिस्से का हरा रंग हमारी समृद्धि, हमारे विकास और प्रकृति से जुड़े हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस झंडे के बीच में गहरे नीले रंग का एक गोल चिन्ह है। यह गोल चिन्ह अशोक चक्र कहलाता है। यह अशोक चक्र हमारी लगातार हो रही प्रगति, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी गतिशीलता का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा प्यारा तिरंगा भारतीय संविधान की मूल भावना, लोकतंत्र, समानता और विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। देश की भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के बावजूद तिरंगा हर भारतीय को समान रूप से जोड़ता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान सिर्फ संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। यह हम सभी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसके लिए सामूहिकता जरूरी है। इसी तर्ज पर किसी भी राष्ट्रीय अभियान की कामयाबी किसी सरकार या उसकी योजनाओं से ज्यादा उस देश के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। ये बेहद खुशी की बात है कि भारत के केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को समाज के हर वर्ग का समर्थन जोशों खरोश के साथ मिला। गांव और शहर में लाखों परिवारों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों ने प्रभात फेरियां निकाली, तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया, निबंध प्रतियोगिताएं करवाई, इस विषय पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सरकारी कार्यालयों के साथ साथ निजी संस्थानों, उद्योगों और व्यापारिक संगठनों ने भी इस अभियान को तहे दिल से समर्थन दिया। इस अभियान से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला समूहों, युवा संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनता को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में जागरूक किया। देश के कई हिस्सों में स्थानीय समुदायों ने सामूहिक रूप से तिरंगा यात्राएं निकाली, जिससे सामाजिक एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना और अधिक मजबूत हुई। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए किसी भी राष्ट्रीय अभियान की कामयाबी में युवाओं की भूमिका खास होती है। हर घर तिरंगा अभियान में युवाओं ने सोशल मीडिया, डिजिटल अभियानों और जन जागरूकता कार्यक्रम के जरिए कमाल का काम किया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने परिवारों और समुदायों को इस अभियान से जोड़ने का बीड़ा उठाया।

इन युवाओं ने राष्ट्रीय झंडे के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों की जुड़ी जानकारियां साझा कर समाज में सकारात्मक माहौल बनाया। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, भारत स्काउट्स गाइड्स, नेहरू युवा केंद्र के साथ साथ अन्य युवा संगठनों ने भी इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका अदा की। देश की महिलाओं ने इस अभियान को सामाजिक चेतना से जोड़ने में विशेष योगदान दिया। स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और स्थानीय संगठनों ने तिरंगा जागरूकता अभियान चलाए। देश के कई हिस्सों में महिलाओं ने हाथ से तिरंगा बनाया और स्थानीय स्तर पर लोगों को उनके सम्मान और सही इस्तेमाल की जानकारी दी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या किसी एक वर्ग विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। यह हम सब जानते हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी राष्ट्र निर्माण के प्रमुख केंद्र होते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं ने विद्यार्थियों में देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रीय झंडे के इतिहास पर व्याख्यान, स्वतंत्रता सेनानियों पर विशेष कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा गया। इन गतिविधियों ने केवल औपचारिक आयोजन का रूप नहीं लिया, बल्कि विद्यार्थियों में जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी पैदा की। डिजिटल क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया ने हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिकों ने अपने घरों पर फहराए गए तिरंगे के साथ फोटो, वीडियोज और मैसेजेज साझा किए। इससे अभियान सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी तक सीमित न रहा, बल्कि डिजिटल जन आंदोलन भी बन गया। ऑनलाइन मंचों के जरिए राष्ट्रीय झंडे का इतिहास, उसके सम्मान से जुड़े नियम और आजादी की लड़ाई की प्रेरक कहानियां बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए गए। इससे खासकर युवाओं में राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ सिर्फ देशभक्ति की भावना तक सीमित नहीं है, इसमें संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन, सामाजिक सद्भाव, नागरिक दायित्वों का निर्वहन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना भी शामिल है। हर घर तिरंगा अभियान ने देश के लोगों को यह संदेश देने में कामयाबी पाई कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों या शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी बरतकर, अनुशासन रखकर, स्वच्छता का ध्यान रखकर, पर्यावरण बचाकर, सामाजिक सद्भाव बनाए रखकर और कानून का पालन कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। जब कोई नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराता है तो वह सिर्फ एक ध्वज नहीं लगाता, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और उत्तरदायित्व की सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी करता है। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों वाला विशाल राष्ट्र है। ऐसी विविधता के बीच हमारा राष्ट्रीय ध्वज हम सब भारतीयों की साझा पहचान बन जाता है। हर घर तिरंगा अभियान ने देश के तमाम समुदायों, वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया। इस अभियान ने यह दिखाया कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान किसी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की सामूहिक भावना का प्रतीक है। इस तरह हम पाते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान ने सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकजुटता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान की व्यापक सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। कई स्थानों पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सही उपयोग, उनके सम्मान और निर्धारित नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। कुछ मामलों में ध्वज के अनुचित प्रदर्शन या उपयोग की घटनाएं भी देखने को मिली। इसलिए जरूरी है कि नागरिक राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े प्रावधानों और उनके सम्मान के नियमों की जानकारी रखें। ध्वज को स्वच्छ, सम्मानजनक और निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शित करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त अभियान का उद्देश्य केवल कुछ दिनों तक ध्वज

0: आना नहीं है बल्कि राष्ट्रीय मूल्यों को जीवन में आत्मसात करना होना चाहिए। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल आर्थिक विकास से संभव नहीं होगी बल्कि इसके लिए जागरूक, उत्तरदायी और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाले नागरिकों की आवश्यकता होगी। हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। अब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यह अभियान नागरिकों को सिर्फ अतीत के गौरव से नहीं जोड़ता बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश भी देता है। हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय चेतना, जन सहभागिता और भावनात्मक एकता का व्यापक जन आंदोलन है। इसने देश के करोड़ों नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से एक साझा पहचान और उद्देश्य से जोड़ा है। अभियान ने यह सिद्ध किया है कि जब सरकार और समाज मिलकर कार्य करते हैं तब राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। आज जरूरत इस बात की है कि तिरंगे के प्रति सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित न रहे बल्कि उसके आदर्श, साहस, सत्य, शांति, प्रगति और राष्ट्र सेवा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान तभी सार्थक होगा जब हम संविधान के मूल्यों का पालन करें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करें और भारत को समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में सक्रिय योगदान दें।
1: मंजीत बहन, अभी हमारे श्रोता भाई बहन सुन रहे थे, ये वार्ता, वार्ता का विषय था हर घर तिरंगा अभियान, जन भागीदारी और राष्ट्रीय चेतना। वार्ताकार थे अनुराग अन्वेषी, वरिष्ठ पत्रकार, नई दिल्ली।
2: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, और अब हम सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह का देशभक्ति गीत।

0: जी,
1: ये
0: अभी
1: लो
0: हमारे
1: खाना
0: भाई बहन
1: जी।
0: सुन रहे थे, ये देशभक्ति रागनी कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम। इस
1: राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में आज श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज

0: राज्य कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल, शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जॉयस अशिता ने रजत और कुमारीशन पद्म गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम,
0: राम। मैं हूँ मंजीत कौर और मेरे साथ हैं
1: लोकेंद्र वर्मा।
0: बिल्कुल, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं लोकेंद्र।
1: देखिए बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ मनोरंजन भी होगा। देखिए शाम का समय में हमारे जो किसान भाई हैं इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं मंजीत जी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सुनने के लिए सभी फ्री होते हैं और काम रेडियो सेट को लेके अपने चौपाल पर बैठे आते हैं और इकट्ठा होते हैं और सुनते हैं, नई नई जानकारी भी सुनाएंगे, मनोरंजन भी कराएंगे, भजन भी सुनाएंगे, उपदेश भी, तो बेसब्री से इंतजार करते हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि हम सभी को पता है एक और जहां 15 अगस्त है और वहीं दूसरी ओर इस समय सावन का मौसम है और रिमझिम रिमझिम बरसातें भी हो रही है और कैच द रेन जैसे हम कैंपेन हमारे पूरे भारत वर्ष में चल रहा है, तो हमें किस तरीके से इसको हम भूल सकते हैं कैच द रेन।
1: हाँ देखिए जो बरसात के मौसम में जैसे आपने कहा कैच द रेन, इस मौसम में हमें अपनी जो बरसात के पानी को हमें संचित करना है ताकि पानी की आगे आने वाले समय में कमी ना हो, क्योंकि जितना हम पानी की बचत करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। देखिए हमारे रहीम जी ने कहा भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यानी पानी के बिना जीवन संभव भी नहीं है।
0: बिल्कुल, जल बिना जीवन नहीं संभव है और कृषि एक ऐसा जो एक क्षेत्र है जहां पर पानी के बिना हम कोई भी संभावना हो ही नहीं सकती है और इस तरीके से क्योंकि इस समय भरपूर बारिश हो रही है और इसका हमें सदुपयोग उठाना चाहिए और जो वर्षा का जो पानी है उसे हमें एकत्रित करना चाहिए, जो कि खेत होते हैं हमें खेत के अंदर भंडारण करना चाहिए यानी कि इकट्ठा कर देना चाहिए, बड़े बड़े गड्ढे बना के उसमें एकत्रित कर लेना चाहिए, या फिर शहरों के अंदर हम बात करें तो जैसे कि बेसमेंट के अंदर टैंक्स बनाए जाते हैं उसके अंदर हमें पानी को इकट्ठा कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। लोकेंद्र भाई
1: बिल्कुल ये तो रही पानी की बात और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि बरसात के मौसम में इस मौसम में हमें अपने पशुओं का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये बरसात का मौसम हमारे लिए लाभदायक भी और बहुत सी चीज़ों के लिए नुकसानदायक भी है। देखिए बरसात के मौसम में जहाँ पशुओं को बांधते वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, पशुओं को सूखे साफ और हवादार पशुशाला में रखें और फर्श पर पानी जमा ना होने दें और इसके साथ साथ पशुओं को साफ और सुरक्षित पेयजल यानी कि पानी पिलाएं और उनको दूषित उनको कोई ऐसा पानी ना पिलाएं जिससे उनको बीमारी भी लगे और चारे वाली जगह जो जहाँ चारा रखते हैं उसमें नमी ना होने दें और बारिश से बचाव रखें। जहाँ होता क्या है मंजीत जी के जहाँ चारे को कभी कभी बरसात के मौसम में फफूंदी भी लग जाती है तो उनको बहुत सारी परेशानी भी होती है और इस मौसम में उनका विशेष रूप से हमें ध्यान देना है।
0: बिल्कुल, हमें संक्रमण से बचना चाहिए क्योंकि बारिश के अंदर सबसे ज्यादा संक्रमण होता है और पशु ही नहीं हम इंसानों को भी ये खास ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए ताकि हर स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ ही हमारा जो स्वास्थ्य होगा उससे ही एक अच्छा अगर हम कहें तो हम भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मंजीत जी, और देखिए अब शाम का समय है और अपने भाई हमारे भाई जो इंतजार करते हैं मनोरंजन का, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं और कृष्ण भजन सुनवाते हैं कृष्ण।

अमर प्रेम की बांध रखी मैंने डोरी। मैं तेरी

0: मंजीत बहन,
1: जी
0: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये कृष्ण कुमार की आवाज में ये भजन।
1: और अब हम बात करते हैं अनावृष्टि और अतिवृष्टि। अनावृष्टि अर्थात सूखा, अतिवृष्टि मतलब बाढ़ या भारी बारिश, दोनों ही विपरीत मौसम।

0: करती है जो फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है, और इससे निपटने के लिए खेत में बहुत सारे उपाय की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल, इसी से संबंधित आज हम अपने भाइयों को एक जानकारी सुनवाते हैं, और जानकारी का विषय है अनावृष्टि और अतिवृष्टि की दिशा में फसल प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं कुशकर्ण दीप सिंह, शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं कुलदीप सिंह।
2: किसान भाइयों नमस्कार। बारिश खेती के लिए निसंदेह फायदेमंद साबित होती है, और खरीफ की फसलों के दौरान तो बारिश का महत्व बहुत अधिक रहता है। बहुत सारे हमारे देश के क्षेत्र ऐसे हैं जो बारिश आधारित हैं और बारिश आधारित फसलें वहां उगाई जाती हैं, जबकि देश भर का कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो बारिश के अधिक होने से परेशान रहता है और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिला है कि बारिश का जो एक समय माना जाता था जुलाई का महीना, जून के आखिर में और जुलाई के शुरुआत में बारिश शुरू हो जाती थी, और उस समय हमारी जो फसलों की रुपाई थी या बिजाई थी वो हम उस समय किया करते थे। लेकिन इस मौसम चक्र के परिवर्तन ने उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, तो अधिक बारिश होना और कम बारिश होना दोनों के जो पहलू हैं इस बारे में आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुशकर्ण दीप सिंह, शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। आपका स्वागत है।
3: नमस्कार किसान भाइयों।
2: खुशकर्ण जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि, ये मौसम चक्र में बदलाव क्या कारण है इसका?
3: देखिए, मौसम चक्र में या हम सही से बोलें तो जो जलवायु जो परिवर्तन हो रही है
2: जी,
3: उसका मुख्य जो कारण है जो प्रदूषण हम देख रहे हैं
2: जी,
3: कि जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो आपकी मिथेन जो हमारे खेतों से भी निकलती है, तो इन सब की वजह से क्या है जो तापमान बढ़ता जा रहा है लगातार
2: जी,
3: इसके कारण हमें जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आज से अगर अपने 30-40 साल पहले की बात करें या इवन 20 साल पहले की भी बात करें तो बारिश एक फिक्स रहता था टाइम भाई, अगर जुलाई के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आनी है तो उस टाइम पे बारिश आती थी
2: जी।
3: तो अब क्या है, बारिश या तो पहले आ रही है अपने टाइम से या फिर अपने टाइम से बाद आ रही है, और जो उसकी अमाउंट है ना कितनी बारिश हमें मिल रही
2: उसमें
3: है
2: भी परिवर्तन,
3: उसमें भी परिवर्तन है। एक समय पे ज्यादा हो रही है फिर बीच में उसमें जो है गैप बहुत ज्यादा है।
2: इसमें मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जब कम बारिश होती है तो उस स्थिति में किसान कैसे अपनी फसलों का प्रबंधन करें, कैसे बुआई करें, कैसे उस समय उनका प्रबंधन करें?
3: पहले तो कम बारिश में हमें ये चीज देखनी है भी बुआई के लिए जल्दी नहीं करनी
2: जी,
3: अच्छी बारिश हो उसके बाद ही बुआई करें। तो कम से कम आपकी 50 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर बारिश हो, एक सिंचाई जितना उसमें पानी हो, फिर हमें बुआई के लिए जाना चाहिए। कम बारिश के बाद बुआई करेंगे या तो उसका अंकुरण ही नहीं होगा, या फिर अगर अंकुरण हो जाएगा तो उसके बाद में जो है वो पौधा फिर हम दोबारा बुआई के लिए जाएंगे तो उससे हमारा खर्चा बढ़ेगा
2: जी।
3: तो हमें वेट करना चाहिए भी जब अच्छी बारिश हो उसके बाद ही हम बुआई करें। दूसरी यहाँ पे स्थिति आती है भी अगर बारिश लेट हो जाती है, मान लीजिए भी किसी जगह पे बारिश नॉर्मल उसका आने का समय है भी जून के आखिरी सप्ताह में बारिश आनी है, तो वो बारिश आ रही है जुलाई के मध्य में या जुलाई के आखिर में, तो उस समय हमें दूसरी फसलों के लिए जाना चाहिए जो कि कम अवधि की हैं, या फिर उसी फसल की ऐसी किस्म का हमें चयन करना चाहिए जो कम अवधि
2: कम अवधि वाली और उन्नत जो किस्में हैं
3: सूखे को सहन कर सके। जैसे के लिए बाजरे के लिए हम जा सकते हैं HHB 67 इम्प्रूव्ड के लिए है ना
2: जी,
3: और धान के लिए हम जा सकते हैं DRR 42, ज्वार के लिए हम जा सकते हैं CSV 42 के लिए। तो इस तरह की जो किस्में रहती हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता है और सूखे को सहन कर सकते हैं।
2: तो खुशकर्ण जी, इसमें आप बताएं कि जब ये अनावृष्टि होती है तो इसमें जो मुख्य फसलें हैं जैसे बाजरा का आपने जिक्र कर दिया, इसके अलावा कौन सी फसलें हैं
3: कम बारिश में जो हम ले सकते हैं? बाजरा ले सकते हैं, ज्वार के लिए हम जा सकते हैं
2: जी,
3: और उसके बाद में जो दलहनी फसलें रहती हैं जैसे आप मूंग लगा सकते हो, तो इनकी क्या अवधि कम रहती है और सूखे को भी ये सहन कर सकती
2: है। सहन कर सकती हैं। अगर अब कई बार ऐसी दशा होती है, पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि अगस्त के आखिर में और सितंबर की शुरुआत में उस समय भारी बारिश होती है, खेतों में जल जमाव होता है, जल जमाव के कारण अगली फसल भी प्रभावित होती है, वो भी समय पर उसकी बुआई नहीं हो पाती, तो उस दशा में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
3: देखिए, ज्यादा बारिश से बचने के लिए तो इसका जो है हमें बुआई के टाइम ही ध्यान रखना है, उस टाइम पे ही हमें खेत के अंदर नाली बनानी है, जैसे हर 10-12 फीट पे अपने एक नाली बना सकते हैं
2: जी,
3: तो वो दोनों ही स्थिति में हमारे लिए लाभदायक है। अगर बारिश कम हो रही है, जितनी भी बारिश होगी उस जो नाली में पानी

0: तो वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा ना, तो
1: जी
0: आगे जब बारिश नहीं होगी तो उस टाइम पे जो है पौधा उसे यूज कर लेगा। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वही नाली आप हमारी जल निकासी की तरह काम करेगी, वहां से
1: जी
0: जो है वो खेत से पानी बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा हम एक चीज और कर सकते हैं, अभी जिस तरह से हम सब्जियां लगाते हैं, अभी मेड़ पे बुआई कर दी और
1: जी
0: जो नाली रहती है वहां पे हम पानी देते हैं, तो उस तरह से मेड़ पे भी बुआई कर सकते हैं, या फिर हम बेड बना के जो चौड़ी क्यारी रहती है
1: जी
0: उस पे भी हम बुआई कर सकते हैं, ताकि जो अतिरिक्त पानी है वो नाली के माध्यम से खेत से बाहर निकल
1: वो
0: जाए,
1: फसल को खराब ना
0: फसल
1: करें।
0: को खराब ना करें।
1: जी, जब भारी बारिश से जल जमाव हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बेड तक जो सतह है उस पर भी पानी जमा होता है, तो जो सब्जी फसलें हैं उनको तो उगाने के और भी कई आधुनिक तरीके हैं, उनके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बता दें।
0: सब्जी के लिए देखिए, सब्जी जो है वो सबसे ज्यादा आपकी प्रभावित होगी ज्यादा बारिश के कारण, क्योंकि
1: जी
0: जो मुख्य जो सब्जी है वो जब लगती है, अगर उस वो पानी के कांटेक्ट में आ गई ना, स्पर्श हो रहा
1: पानी
0: पानी
1: और
0: उसे,
1: मिट्टी दोनों के
0: हाँ पानी
1: कांटेक्ट
0: और
1: में जब
0: मिट्टी के
1: आएगी,
0: कांटेक्ट में जब आ गई
1: जी
0: तो वो उस पे
1: खराब होगी, वो
0: खराब हो जाएगी
1: उसका
0: ना,
1: विकास रुक जाएगा।
0: उसका विकास रुक जाएगा। तो
1: जी
0: उसके लिए हम मल्चिंग के लिए जा सकते हैं, जो प्लास्टिक मल्च रहती है, ताकि अगर नीचे प्लास्टिक की वो लेयर रहेगी तो वो मिट्टी और उस पानी के कांटेक्ट में ना आए, और हम उसे मेड़ के ऊपर लगा सकते हैं और चौड़ी क्यारी ना बेड बना के भी हम सब्जी को लगा सकते हैं।
1: अगर हमारी किसी फसल में अधिक जल जमाव हो गया अधिक
0: जी
1: बारिश के कारण, तो उस समय हमें फसल प्रबंधन कैसे करना है?
0: जी सबसे पहले तो जब भी हमारे खेत में पानी खड़ा हुआ है तो जितना जल्दी वो निकल जाए उतना ही हमारे लिए लाभदायक रहेगा,
1: जी
0: जल्द से जल्द हमें जो है वो पानी वहां से निकालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, अभी अगर लगातार बारिश हो रही है तो देखो, जड़ों के माध्यम से पौधा पानी भी लेता है,
1: हाँ
0: पोषक
1: जी
0: तत्व भी
1: जी
0: लेता है ना, तो एक काम हम ये कर सकते हैं, भाई पौधे की पत्तियों के ऊपर हम पोषक तत्वों का छिड़काव कर दें,
1: जी
0: जैसे हम यूरिया 1%, 0.5 से लेके 1% घोल बना के
1: जी
0: यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो वो भोजन ले रहा है ना पोषक तत्वों के रूप में, जड़ों
1: जी
0: से अब वो नहीं ले पा रहा, पत्तियों के माध्यम से हम वो उसे भोजन दे
1: उपलब्ध
0: सकते हैं।
1: करवा सकते हैं।
0: और जैसे ही पानी हम खेत से बाहर निकालें तो उसके बाद में निराई गुड़ाई करनी चाहिए हमें,
1: जी
0: तो जिससे जो है मिट्टी के अंदर वायु संचार अच्छा हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही ना नीचे,
1: जी
0: तो निराई गुड़ाई से पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, ये उसके बाद हम कर सकते
1: ताकि जड़ों का विकास अच्छे तरीके से हो सके।
0: हैं। जी
1: लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जब अत्यधिक बारिश हुई है तो वो पानी निकासी की व्यवस्था समुचित किसान भाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी जमा होता है,
0: जी
1: उससे जो अगली फसल की बुआई है हमारी वो प्रभावित होती है। तो उस दशा में हम अगली फसल की जो बुआई है उसकी बुआई जुताई खेत की और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
0: जी अगली फसल की बुआई के लिए, क्योंकि खरीफ के बाद जब रबी की हम फसलें लगाते हैं ना,
1: जी
0: नॉर्मली तो हम ये चीज कर सकते हैं भाई, उसको नर्सरी के अंदर किसी पौधे को, मतलब या जो फसल को छोटे एरिए में हमने उगा लिया और
1: जी
0: उसके बाद में उसकी रुपाई कर दी मेन फील्ड में, पर जो रबी के अंदर जो फसलें हैं उसमें ये चीज संभव नहीं है।
1: नहीं है।
0: सरसों भी हम ऐसे नहीं लगा
1: जी
0: सकते, गेहूं भी हम ऐसे नहीं लगा सकते, तो
1: जी
0: ये वैसे आमतौर पर ऐसी समस्या आती नहीं है।
1: जी
0: समस्या ये आती है अभी जब हम उसकी कटाई कर दी ना, उस
1: जी
0: टाइम पे जो बारिश हो गई,
1: जी
0: तो अगर आपकी फसल खेत में पड़ी है तो उसका
1: हाँ
0: अंकुरण हो जाएगा,
1: जी
0: या फिर अगर आपने उसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली ना, आप घर पे ले गए, वहां पे फसल पड़ी है उसके ऊपर बारिश होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं उसके ऊपर,
1: ये बिल्कुल
0: चाहे।
1: आपने जो विषय रखा है, ये बाजरे की फसल में पिछले कई वर्षों में ऐसे उदाहरण बहुत से सामने आए कि जब 2-3-4 दिन लगातार बारिश हो
0: जी
1: रही है और बाजरे की फसल जब खेत में कटी हुई है तो उसमें अंकुरण हो जाता
0: अंकुरण हो
1: है,
0: जाता है,
1: उस दशा में किसान भाई
0: तो
1: क्या करें?
0: नमक डाल सकते हैं जी हम, प्रति एकड़ 20 से 25 किलो अगर आप नमक डालोगे तो उससे क्या है, जो उसमें नमी रहती है वो बाहर निकल जाती है,
1: वो
0: और
1: फसल के
0: अंकुर,
1: ऊपर डालना
0: हाँ
1: होगा।
0: फसल के ऊपर, और वही फसल अगर आपके घर पे भी पड़ी है तो वहां पे भी हम नमक डाल सकते हैं, तो नमक से क्या होगा, नमक पानी घुल के मतलब बाहर आ जाएगा, अभी जब तक हम आप उसे सुखा नहीं रहे, तो ये एक कुछ टाइम के लिए हम उपाय कर सकते हैं, अभी 5-7 दिन बाद बारिश हो रही है आप फसल को नहीं सुखा पा रहे, तो नमक आप डाल सकते हो खेत में भी, और अगर आप घर पे उसे रख रहे हो तो वहां भी डाल।
1: तो खुशकर्ण जी, आप किसानों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अतिवृष्टि और अनावृष्टि के दौरान फसल प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: देखिए मौसम हमारे हाथ में नहीं है,
1: जी
0: उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर उस तरह के उपाय हम अपना सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, जैसा
1: जी
0: कि हमने बात भी की भी आप ऐसी किस्मों के लिए जा सकते हो जो सूखे को सहन कर सके, आप पहले से जल निकासी के प्रबंधन कर सकते हो ना, आपने खेत में नाली बना के रख ली, उसके अलावा जैसे हम बात करें तो गोबर की जो खाद है, या हरी खाद आप डाल सकते हो, तो उससे क्या है भी जो मृदा की संरचना है वो अच्छी रहेगी।
1: जी
0: तो अगर कम बारिश हो रही है उस समय भी उसमें ज्यादा

0: पर जो ये बारिश का चक्र है, जो ये मौसम का चक्र है, इसमें भी सुधार होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
1: बिल्कुल। और आप अब सुन रहे थे खुशकर्ण दीप सिंह को, जो कि शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली से, और खास बातचीत की कुलदीप सिंह ने।
2: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं उपदेश कलाकार हैं योगेश कुमार और साथी की आवाज में।

0: मंजीत बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये उपदेश कलाकार थे योगेश कुमार व साथी।
1: बिल्कुल, और हम काफी सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, उनमें से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत सरकार की प्रमुख कृषि बीमा योजना है, जिसे 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना।
0: बिल्कुल अनमंजी जी, और इसकी विशेषताएं भी हम अपने भाइयों को बता देते हैं कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि और इसके अलावा अधिसूचित प्राकृतिक जोखिम में होने वाले फसल को नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा करना है, और किसान को प्रीमियम की का जो सीमित हिस्सा देना है और शेष प्रीमियम में सरकार सहायता करती है। फसल नुकसान के आकलन में फसल कटाई प्रयोग व आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसके जो पात्र हैं, पात्र भी बता देते हैं कि पात्र किसानों को के बीमा दावों का भुगतान बैंक खाते से किया जाता है, और इसके अलावा हम बता दें कि फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना देना महत्वपूर्ण है। वास्तविक सीमा समय सीमा राज्य और नुकसान के प्रकार के अनुकूल लागू होती है।
1: बिल्कुल, और लाभ की बात करें तो योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक जोखिम को कम करती है।
0: और देखिए, इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों का ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:41 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और आखिरी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 809

0: 10 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को बेहद सफल और उत्पादक बताया। कहा, सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दी। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद सफल और उत्पादक रहा। आज दिल्ली विधानसभा में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की लगातार अनुपस्थिति के बावजूद सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई।
5: 3 दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र, जिसका कल सत्रावसान हो गया, ये 6th सेशन था 8वीं विधानसभा का। जो भी एजेंडा हाउस में लाया गया वो सभी पास हो गए और 13 घंटे 19 मिनट वो कार्रवाई चली है। तमाम बाधाओं के बाद भी इन 6 सत्रों में 19 सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये बैकलॉग है जो कई सालों से रुका हुआ और उसका एक ही मकसद है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना।
4: सदन के मॉनसून सत्र में हुई प्रमुख कार्यवाही का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 52 जनहित के मामले उठाए गए। इन मुद्दों में कूड़ा निस्तारण, जल भराव, आवारा पशु, पीडब्ल्यूडी की सड़कों और बिजली के बिलों सहित कई महत्वपूर्ण नागरिक समस्याएं शामिल रहीं। सदन में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सजा के मुद्दे पर 2 दिवसीय अल्पकालिक चर्चा भी हुई। इसके अलावा दिल्ली लक्ष्मी योजना के संबंध में सदन ने सर्वसम्मति से बधाई प्रस्तावित पारित किया गया। सत्र के दौरान 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए और पारित किए गए। इनमें दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान विधेयक, नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवाओं की उपलब्धता के अधिकार से संबंधित विधेयक, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
4: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों तथा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली के दीर्घकालिक विकास की परिकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार करती है। बैठक में सतत और समावेशी शहरी विकास के लिए रोड मैप पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना तथा दिल्ली को सभी के लिए स्वच्छ और हरित राजधानी बनाना है। हरियाली उत्सव के अवसर पर आज दिल्ली रिज स्थित पीबीजी ग्राउंड सेंट्रल ब्रिज में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मेगा पौधारोपण अभियान 2026 में 70 लाख पौधों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 40 लाख पौधे लगाए हैं, इसके साथ ही दिल्ली ने पौधारोपण लक्ष्य का लगभग 58% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए

0: जा रहे प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग और डिजिटल निगरानी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि रिज क्षेत्र में लगभग 51 स्थानों पर पुनर्स्थापना कार्य जारी है और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण तथा पारिस्थितिक पुनरुद्धार पर सरकार विशेष बल दे रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया।
1: हम सबके सामने ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की ये प्रतिमा जो सैल्यूट कर रही है, उस भारत मां को सैल्यूट कर रही है जिसकी आजादी के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन अर्पण कर दिया। उस आजादी के लिए जहाँ पे गांधी जी का सत्याग्रह हो या भगत सिंह का बलिदान हो या रानी लक्ष्मीबाई का आंदोलन हो, एक एक स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों को निछावर करके इस भारत मां की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी।
0: महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने युवाओं से तिरंगा हाथ में लेकर देश को मजबूत बनाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही आज रोहिणी सेक्टर 8 क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि ये भारत की एकता, अखंडता, गौरव और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों तथा सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होकर प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण होता है। महापौर ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अपनाने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है, जो 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर एक बड़ा आधार प्रदान करती है।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: दिल्ली के शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर झूठे और मनगढ़ंत दावे करने का आरोप लगाया है। स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण योजना में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सूद ने कहा कि 3000 से अधिक छात्राओं को नई साइकिल मिलने से उनके चेहरों पर खुशी है, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। श्री सूद ने कहा कि विपक्ष ने 3 से 8 अगस्त के बीच अलग अलग आंकड़े पेश किए जिनमें लगातार बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सभी साइकिलों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। शहरी विकास और शिक्षा मंत्री ने झुग्गीवासियों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षा संकाय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा उभरती हुई तकनीक था। इसका उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और प्रशिक्षु शिक्षकों की तकनीकी और शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना था। साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलती तकनीकों को समझने और उनका प्रभावी तथा रचनात्मक इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम में करीब 100 प्रतिभागियों ने

0: हिस्सा लिया। इनमें सेवारत और भावी शिक्षक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा शोधार्थी शामिल थे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लोगों से रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
1: दिल्ली मेट्रो के अनुसार मेट्रो की ओवरहेड बिजली लाइनों में 25,000 वोल्ट का करंट होता है। इनके सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से जान जा सकती है। पतंग की डोर ओवरहेड उपकरणों में फंसने से बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। इससे मेट्रो ट्रेनों और पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंचने के साथ ही सेवा प्रभावित होने की आशंका रहती है। दिल्ली मेट्रो ने विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धातु वाले मांझे से पतंग न उड़ाने की सलाह दी है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यातायात पुलिस ने कहा कि कल सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास यातायात पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेगा। साथ ही सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इन रास्तों में नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और लिंक रोड सहित अन्य सटे हुए रोड शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, 11 मूर्ति मंदिर मार्ग, NH 24 तथा NH 9 निजामुद्दीन खट्टा, बारापुला रोड और रिंग रोड सहित GT रोड, ISBT कश्मीरी गेट का उपयोग करने को कहा है। वहीं आज रात 12 बजे से कल सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच माल ढोने वाले वाहनों को आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। यातायात पुलिस ने लोगों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेने और आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचने के लिए जल्दी निकलने की अपील की है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजिट लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने पीपल फॉर एनिमल्स, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वन एवं वन्य जीव विभाग के साथ मिलकर जामा मस्जिद स्थित कबूतर बाजार में संयुक्त छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान अलग अलग दुकानों से 863 पक्षियों और जानवरों को बरामद कर बचाया गया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ऋषि कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाजार की 5 से 6 दुकानें जानवरों और पक्षियों के अवैध कारोबार में शामिल हैं।
3: रेड के दौरान 800 से अधिक बर्ड्स और एनिमल्स वहां से रेस्क्यू किए गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से हमें ये पता चला कि 460 के आसपास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि शेड्यूल 2 में सेल और परचेज के लिए बैंड हैं। इसी के साथ साथ 400 से अधिक ऐसे एनिमल्स मिले जिनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया था और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब थी।
0: दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। वहीं कल हुए मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। और मौसम। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को बेहद सफल और उत्पादक बताया। कहा, सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दी। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के

0: फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर यात्रा परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। और श्रोताओं, ये वक्त है फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत मालिका का।

जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गीत मालिका में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने की सुना फिल्म धरती से लता मंगेशकर की आवाज़ में और साथ में मोहम्मद रफ़ी। इस गीत को लिखा राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ हुई है। और राही, जी हाँ, रास्ते, राही, बहुत कितना कहें कि कितना प्यारा शब्द है राही। लेकिन वो नहीं होता कि हम सब अगर जिक्र करें, बात करें, सोचें कि पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे मिल जाते हैं राही। राही तो हम सब हैं, अपनी अपनी मंजिलों की तलाश में, अपनी अपनी कहानियों के साथ। कोई सपनों के शहर में नौकरी ढूंढता हुआ राही है, तो कोई रिश्ते को निभाने में लगा हुआ राही है, और कुछ नहीं तो बस खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा एक राही है। और किसी ने ठीक ही तो लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में और साथ में मोहम्मद रफ़ी। फिल्म का नाम एक मुसाफिर एक हसीना। ओपी नैयर ने इस गीत को संगीत दिया। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना और राही। जी हाँ, मुसाफिर होने का सबसे सुंदर हिस्सा पता है क्या होता है? सबसे सुंदर बात यह होती है कि मंजिल से ज़्यादा ना आप रास्ते गढ़ते हैं, आप रास्तों को चुनते हैं। भाई मंजिल तो पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन जो रास्ते में मुलाकातें होती हैं, जो लोग मिलते हैं, रास्ते के कांटे होते हैं, थोड़ी सी थकान भी होती है, और किसी अजनबी की मुस्कान या फिर एक कप चाय की गर्माहट, यही तो सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं। चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो या फिर कामयाबी का सफ़र, भाई कुछ रास्ते जो है ना, वो कहते हैं कि यादगार बन जाते हैं। इसलिए अगर आज के सफ़र में या फिर ज़िंदगी के सफ़र में थोड़ी सी भी रुकावट होती है, तो रास्ता धुंधला भी दिखता है, तो घबराइए मत, रुकिए और ज़रा सोचिए कि हर एक राही की ना, हर एक मुसाफिर की अपनी अपनी रफ्तार होती है। भाई मंजिल देर से भी मिल सकती है, और मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन सफ़र खूबसूरत होना बेहद ज़रूरी है।

जी हाँ दोस्तों, अजूबा फिल्म से गीत था आशा भोसले की आवाज में और संगीत थिया आरडी बर्मन ने। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:15 हो चुके हैं। और कहते हैं ना जनाब कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो भाई ये तो और भी गलत बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए आप मंजिल तक पहुँचे ना पहुँचे। और जैसा कि हमने कहा कि रास्ते खूबसूरत होने चाहिए तो मंजिल कहीं ना कहीं अपने आप हासिल हो ही जाती है। और किसी ने ये भी ठीक कहा है कि अगर आपकी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी हैं तो समझिए कि आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं होता है, ख्वाहिशें हमेशा बरकरार रहती हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म सुहाना सफ़र से, और समय आपको बता दें एक बार फिर से कि स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:21 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं रास्तों की। जी हाँ, मुसाफिर, रास्ते, राही, हम जिंदगी के सफ़र में बहुत आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कोई सफ़र बहुत खूबसूरत रहता है तो कई बार कुछ तकलीफ़ों से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन पाँव के छाले हमें देखने नहीं चाहिए और ना ही हमें ये देखना चाहिए कि राह में आपकी मंजिल तक दूरियां कितनी हैं, उन्हें नापना नहीं चाहिए। राही तो बस वही होता है जो चलता रहे हर हाल में।
1: आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता है।

फिल्म साहिब बहादुर से ये गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में और संगीत दिया मदन मोहन ने। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। वक्त रात्रि के 8:27 हो चुके हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, रास्तों की। एक ऐसा रास्ता जो कभी कभी खूबसूरत भी होता है और कभी कभी बहुत मुश्किल भी। दोस्तों, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम सफ़र नहीं मिलते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन तो कदम बढ़ा, राही इरादे बुलंद रख, क्योंकि कोशिश करने वालों के कभी भी हौसले जो है ना, वो कभी नहीं ढलते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और मंजिल तक पहुँचने की पूरी पूरी कोशिश रखनी चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, आपने गीत सुना अभी मेरी जंग फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। और कहते हैं ना, राही वो है जो लगातार चलता रहता है। सफ़र का मज़ा लीजिए और मंजिलों की जो फिक्र है ना उसे तो छोड़ ही दीजिए। जिधर ले जाए हवा, जी हाँ जिधर ले जाए हवा, बस उसी तरफ अपने जो रास्तों का जो रुख है ना वहाँ पर मोड़ दीजिए। हर मोड़ पे कुछ नहीं मिलेगा तो एक तजुर्बा तो ज़रूर मिलेगा। और मुश्किलों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस रास्ते जो है ना वो जोड़ते हमें आगे बढ़ना है।

जी हाँ श्रोताओं, छोटी सी मुलाकात इस फिल्म से रहा ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वाकई में जिंदगी की राह में किस मोड़ पर कौन मिल जाए ये हम नहीं जानते हैं, कौन सी सुबह क्या खूबसूरत पैगाम आपके लिए लेकर आती है ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हमारा काम क्या है, सिर्फ चलते रहना और बिल्कुल भी मुश्किलों से डरना नहीं। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।

जी हाँ, परिचय फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत को सुना। जी हाँ, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ना समेट खुद को इस कदर इन अंधेरों में, नया दिन ढलेगा और फिर कोई नई बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारा सफ़र इतना ही रहेगा, लेकिन 11:10 पर हम आपसे फिर मिलेंगे लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जी हाँ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में रहेंगे आपके साथ 11:10 पर। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को इस कार्यक्रम से अनुमति दें। आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त रात्रि के 8:44 और पूरे 53 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
1: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक

0: ने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2 मिनट और 18 सेकंड तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding.

0: रात उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट में बहस कराने के मामले पर अपना मौकफ बार बार बदल रही है। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ने पहले तो बहस का मुतालबा किया था, लेकिन जब सरकार इस पर रजामंद हो गई तो अपना मौकफ बदल दिया। जनाब गोयल ने कहा कि मॉनसून इजलास शुरू होने के बाद से सरकार लगातार अपोजिशन के साथ बातचीत करती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीके इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट में तब्दीलियां भी की हैं और अपोजिशन से बार बार ये अपील की है कि वो बहस में हिस्सा ले। जनाब गोयल ने इल्जाम लगाया कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ने के लिए जिम्मेदार हैं।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट में तलबा के मामले समेत किसी भी मामले पर बहस और अरकान की जानिब से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो बहस के लिए तैयार है।
3: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: इधर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन नीट मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर सरकार की जवाबदेही चाहती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्राइवेट सरमायाकारी के लिए पब्लिक सरमाया एक मुतबादिल होने के बजाय इसे तकवियत पहुंचाने वाला एक वसीला होना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों में प्राइवेट सरमाए को यकजा करने में नए तरक्याती बैंक के रोल के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों की मईशतें आलमी सतह पर तरक्की में सरकर्दा रोल अदा कर रही हैं, लेकिन साथ ही उन्हें प्राइवेट सरमाए को रागिब करने में चैलेंजों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरमाए की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ सरमायाकारों का एतमाद कायम करना, इस्तेहकाम बरकरार रखना और एक तवील मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव का विजन खलाई टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत की जानिब आगे बढ़ाना है। जनाब गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुद किफालत और कौमी तरक्की साथ साथ फरोग पाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की $4 खरब की मईशत मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये $30 खरब की मईशत बनने की राह पर गामजन है। तिजारत से मुतालिक हुकूमत के इकदामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए आजाद तजारती समझौते 38 तरक्की याफ्ता ममालिक का इहाता करते हैं, जिनकी मुश्तरका मजमूई घरेलू पैदावार GDP तकरीबन $60 खरब है।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं क्लास के जिमनी इम्तिहानात 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा डीजी लॉकर पोर्टल के जरिए अपने इम्तिहान के नतीजे देख सकते हैं, जो इस तरह है results.djlocker.gov.in। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिला इंतजामिया ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के तौर पर दरियाए चनाब में तिरंगा बोट रैली का एहतमाम किया ताकि यौम आजादी की तकरीबात से कबल लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को और ज्यादा फरोग दिया जा सके। इस रैली से दरियाए चिनाब के दिलकश पस मंजर में शान से तिरंगा लहराने के साथ हुब्बुल वतनी

0: विजय शर्मा की क्यादत में ये तिरंगा यात्रा बस्तर के दूरदराज कबायली इलाके से गुजरी, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां माजी में माओ नवाजों के बड़े वाकयात पेश आए। तीन रोज़ा यात्रा 14 अगस्त को बीजापुर ज़िले की करेगुट्टा पहाड़ी पर इख्तिताम पजीर होगी, जहां कौमी परचम लहराया जाएगा। नायब वज़ीरे आला विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद मुल्क और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इन इलाकों में अब माओ नवाजों की शोरिश खत्म हो चुकी है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: भारतीय रेलवेज ने शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के 660 रूट किलोमीटर पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है, जिस पर 295 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया है कि शिमाल मशरकी रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के बालान सेक्शन इसके दायरे में आएंगे। कवच निजाम के चौथे मरहले से मुतालिका रेल सेक्शनों पर सेफ्टी का बुनियादी ढांचा मजीद मुस्तहकम हो सकेगा। कवच निजाम मुल्क में ही तैयार किया गया अज खुद काम करने वाला एक ऐसा तहफुजाती निजाम है, जिसका मकसद रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त की लगातार निगरानी के जरिए रेलगाड़ियों के आपस में टकराने के हादसों की रोकथाम करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहां मुजाहिरीन पाकिस्तानी फोर्सेस के जेर साए निशाना बनाकर की गई हलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निजाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाजा इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 12 घंटे के दौरान शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है, जिसके जेर असर कल उड़ीसा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार जजायर, केरला, गोवा और राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी इस महीने की 15 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। नाइजीरिया के शहर लागोस में जारी दौलत मुशरका फेंसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय फेंसिंग टीम ने मुख्तलिफ सीनियर इन्फरादी मुकाबलों में सोने के 3, चांदी और कांसे का एक एक तमगा जीता। भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 29 हो गई है, जिनमें सोने का 8, चांदी के 7 और कांसे के 14 तमगे शामिल हैं। भारत ने सीनियर खवातीन के फॉयल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने और चांदी के दोनों तमगे हासिल किए। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने इमदाद बाहमी शोबे के लिए सरमाए की फराहमी और इसके फरोग से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है। केरला रियासत का नाम बदलकर केरलम रखने से मुतालिक बिल को भी मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुनजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुशतरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से मुतालिक मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक मुरासला तहरीर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी सतह पर तरक्की की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की मईशतों में और ज्यादा प्राइवेट सरमाए पर जोर दिया है। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के बाज हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

चमकता हुआ उसका रुखसार होगा।

0: ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो
0: जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा
1: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

0: सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
1: University Grants Commission UGC has issued 16 letters of intent LOIs to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education Dr. Sukanta Majumdar said this in a written reply in the Rajya Sabha. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu.

आपने सुना ये गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, आवाज लता मंगेशकर की थी। अगला गीत बहारों के सपने फिल्म से, राहुल देव बर्मन, जी हाँ आदि बर्मन का संगीत है और लता मंगेशकर की आवाज।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म इज्जत से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। अब अगला गीत आपके लिए आ रहा है फिल्म शोर से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और संगीत से पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवाने जा रहे हैं।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। और इसी फहरिस्त में अगला गीत जो आ रहा है, और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत भी, जी हाँ, क्योंकि आप घड़ी देख सकते हैं, समय जो होने वाला है इस कार्यक्रम का खत्म कुछ ही देर में। फिलहाल आपके लिए गाना, जी हाँ, तैयार है। हीरा पन्ना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपको सुनवाएंगे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इसी गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यही समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 18 आतंकियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के अनुसार सुराब जिले में आतंकी विस्फोटकों से लदी गाड़ी तैयार कर रहे थे, इसी दौरान विस्फोटक समय से पहले फट गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों और बलूचिस्तान पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गेब्रियासिस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रकोप अब तक का सबसे घातक इबोला प्रकोप बन सकता है। कांगो में अब तक 4,300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of this bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. The report of the inquiry committee investigating allegations concerning former Allahabad High Court Judge Yashwant Verma was tabled in both the Houses of Parliament. The Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Yashwant Verma had submitted its report to the Lok Sabha Speaker Om Birla in May this year. The committee was constituted by Mr. Birla on the 12th of August last year to probe the allegations levelled against Justice Verma after a sum of burnt cash was found at his official residence in New Delhi. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said, "The government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion."
4: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
3: University Grants Commission UGC has issued 16 letters of intent LOIs to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education Dr. Sukanta Majumdar said this in a written reply in the Rajya Sabha. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah launched the Grameen Gyan Seva.

0: क्या?
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

0: वंदिनी पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
1: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
0: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
1: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुँचेगा।

0: गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, ये सुनते हैं ये गजल सम्राट जगजीत सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की मधुर आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की ही मधुर आवाज में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गजलों और गीतों कार्यक्रम के इस अंत में आइए सुनते हैं ये गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के अवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं एआईआर लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभू।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकेंगे। 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 16। सुबह 6:55 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का।

0: सुबह 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुनेंगे और 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। 9:15 पर आप कार्यक्रम उद्योग पत्रिका सुनेंगे और 9:30 पर समय होगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। सुबह 10 बजे आप अंग्रेजी हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है, इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे

तक यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर माथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि केरल विधानसभा 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरलम करने का अनुरोध किया था। मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान में इसे केरल लिखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद भवन परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा रोड ओवर अंडरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उधर नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल